0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পাছতে ছয় বজাত হিন্দীত আৰু ছয় বাজি পাঁচ মিনিটত ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ओमिन आउन लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक रक्षा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
3: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है। समझौते पर छह महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए दो उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया है। हादसे में छह श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है।

0: सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के हमलों से अमेरिका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले का आदेश दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। और वहीं 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Min Aung Hlaing held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks yesterday, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development cooperation, health, education and energy. Mr. Misri said that both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
2: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
1: BJP National President Nitin Naveen held a meeting with senior party office bearers and workers in New Delhi yesterday. Talking to media, party MP and spokesperson Dr. Sambit Patra shared key details highlighting discussions on the Narendra Modi government's 12 years of service, organizational expansion and future initiatives aimed at broadening the party's outreach across various sections of society. He said that the government is completing 12 years in office and everyone has witnessed how India's progressed under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, with advancement taking place across every sector. Mr. Patra said, today the Bharatiya Janata Party and the NDA have been given the opportunity to serve in government in 22 states. Uttar Pradesh government has constituted two separate high-level inquiry committees to investigate the collapse of the segmental span of the under-construction bridge over the Bethwa River in Hamirpur district. The committees under the district administration and the Uttar Pradesh Bridge Corporation have begun a comprehensive investigation into the incident which took 6 lives. District Magistrate Hamirpur Abhishek Goyal said that the three-member inquiry committee constituted by the district administration headed by the Additional District Magistrate Namami Gange is conducting a detailed examination of all administrative, technical and procedural aspects related to the incident. The Central Bureau of Investigation has arrested the top executive of Reliance Communication Group, Amitabh Jhunjhunwala, in a bank fraud case. The agency said that he was the group managing director of Reliance Communications Group and was controlling the affairs of important functions like corporate finance, banking and utilization of funds. It is alleged that due to misutilization of loan funds, the banks suffered wrongful losses. The Enforcement Directorate has provisionally attached 14 immovable properties belonging to Gyan Sagar Educational and Charitable Trust worth around 1,600 crore rupees located at Ramnagar in Punjab under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act. U.S. President Donald Trump has said that Israel and Hezbollah have agreed to dial back fighting after he held talks with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and communicated with the Lebanon militant group through mediators. Trump announced the development in a social media post following his call with Netanyahu. U.S. President said there will be no troops going to Beirut and any troops that are on their way have already been turned back. He said that Hezbollah had agreed that all shooting will stop, that Israel will not attack them and they will not attack Israel. In hockey, India registered a commanding 4-1 victory over Korea in their third Pool A match of the Men's Under-18 Asia Cup in Kakamigahara, Japan yesterday. With the win, India moved level on 6 points with Korea and Japan in Pool A. The top two teams for each pool will advance to the semifinals. India will take on Chinese Taipei in their final pool match tomorrow. In Uttarakhand, UNESCO World Heritage Site Valley of Flowers, located in Chamoli district, has been open to tourists. Forest Department has appealed to visitors to cooperate in the conservation of the valley's rich biodiversity and rare plant species. And that is the end of this news bulletin.
3: মিডিয়াম ৱেভৰ 299.9 মিটাৰত 1035 কিলোহাৰ্জত আৰু DRM ফ্ৰিকুৱেঞ্চি 1026 কিলোহাৰ্জত। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া শুনক অনুষ্ঠান পৰিস্থিতি। প্ৰথমে শুনক আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ যোগেদি আজি প্ৰচাৰ হ'ব লগা অনুষ্ঠানসমূহৰ এক চমু পৰিস্থিতি। পুৱা 6:15 মীনা যোশীৰ কণ্ঠৰ ভজন, 6:20 আৰু নিশা 8:15 জবা চক্ৰৱৰ্তীৰ কণ্ঠৰ লোকগীত, 6:30 পুৰণি হিন্দী চিনেমাৰ গীতৰ অনুষ্ঠান মধুবন, 7:15 আৰু 8:40 আধুনিক গীতৰ অনুষ্ঠান, 7:50 নিয়োগ বাতৰি, 9:15 চিনেমা গীতৰ অনুষ্ঠান ৰূপালী ঢৌ। দ্বিতীয় অধিৱেশনৰ দিনৰ 11:30 গীতিমালিকাৰ গীত অনুষ্ঠানৰ শিল্পী ৰীতা দাস, জগদীশ বৰুৱা, দীপালী বৰদলৈ, সদানন্দ গগৈ আৰু দীপ্তিৰাণী পেগু। দিনৰ 12:10 সৈন্যবাহিনীৰ উদ্দেশ্যে প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠানত আছে ফিল্ম সংগীত, আজ কা গীত, গীত অপনা ধুন পৰাই, এক হি ফিল্ম কে গীত, এক হি কলাকাৰ কে গীত আৰু গুঞ্জন। বিয়লি 3:00 পৰা আকাশবাণী ৰেইনব'ৰ অনুষ্ঠানসমূহ ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব। বিয়লি 5:10 পৰা যুৱক যুৱতীসকলৰ উদ্দেশ্যে প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠান যুৱবাণীত আছে মনোৰঞ্জন শিক্ষণ প্ৰশিক্ষণ সংস্থান, জুৰি বৰ্মনৰ কণ্ঠৰ লোকগীত, কস্তুৰী বৰাৰ কণ্ঠৰ আধুনিক গীত আৰু আইনুল হক আৰু সংগীবৃন্দৰ কণ্ঠৰ জিকিৰ। একক ছবিৰ গীতৰ অনুষ্ঠানত অৰণ্য ছবিৰ গীত আৰু 7:20 মৃদুলা দাস আৰু সুদৰ্শন বৰকটকী ৰচিত আৰু প্ৰযোজিত আলেখ্য বৰ্ষাসিক্ত বসুন্ধৰা।

0: 187 লাখ টকাৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিছে। 2024-25 বৰ্ষত এই বিক্ৰীৰ পৰিমাণ আছিল 1,24,00,000 টকা। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত এমাজন আৰু চৰকাৰী ই মাৰ্কেট প্লেছত ইয়াৰ বহুল প্ৰচাৰিত ইকোশ্ব মুকলি কৰিছে। প্ৰান্তীয় সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ দ্বাৰা স্থানীয়ভাৱে তৈয়াৰী জৈৱ বৈচিত্ৰ সম্পৰ্কীয় সামগ্ৰীসমূহ এখন বহল বজাৰৰ জৰিয়তে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে এই পদক্ষেপ লোৱা হৈছে। কাজিৰঙা ষ্টাফ ৱেলফেয়াৰ ছচাইটিয়ে পৰিচালনা কৰা এই কৈশৱসমূহে আৰম্ভণি দুবছৰৰ ভিতৰতে আশানুৰূপ অগ্ৰগতি লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানত নিয়ন্ত্ৰণ কৰিল। পৰৱৰ্তী বাতৰি পুৱা 9 বজাত শুনিবলৈ পাব।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
5: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
4: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1,640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी श्री आउ लाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति आउ लाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है, अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमरीका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ा

0: ने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
3: 2 to 3 ब्रांचेस ऑल्सो।
1: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
4: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वही मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि यह घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
5: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नवनियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अब ये रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में 2 पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
7: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। लोकसत्य ने पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 के सफल परीक्षण के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पत्र ने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमा के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है, भारत के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के 3 से 5 जून के मध्य लिए जाने वाले फैसलों का विश्लेषण किया है। शीर्षक दिया है, महंगाई से गरीबों को बचाने पर फोकस होना चाहिए। पत्र याद दिलाता है कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्नों की कीमतें इलेक्ट्रॉनिक सामान के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं।
0: औरंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमरीका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर-18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। म्यांमार प्रेसिडेंट ऊ मिन आउन क्लाइन सेज हिज कंट्री विल नॉट अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स। India and US have finalized most elements of first phase of bilateral trade agreement, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Uttarakhand's UNESCO World Heritage Site, Valley of Flowers, opened to tourists. 22 rowers included in TOPS development group ahead of Asian Games 2026. And in hockey, India registered dominant 4-1 win over Korea in Men's Under-18 Asia Cup. Myanmar President Ooh Min Aung Hlaing has assured Prime Minister Narendra Modi that Myanmarese territory will not be allowed to be used against India's security interests. The two leaders held wide-ranging talks to boost bilateral ties in trade, defense, energy and connectivity in New Delhi yesterday. Mr. Aung Hlaing is on a 5-day visit to India. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said the President of Myanmar reiterated the assurance that Myanmar's territory will not be permitted to be used against India's security interests. Mr. Misri said Prime Minister Modi reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests.
9: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
8: The Foreign Secretary said that both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in areas of trade and investment, health, education, energy, and critical technologies like artificial intelligence. The Myanmarese leader, accompanied by a high-level delegation, will travel to Mumbai today for business and industry interactions and site visits. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India and the United States have finalized most elements of the first phase of the bilateral trade agreement and negotiations are now focused on a few minor issues, commas and full stops. We have a report.
10: Commerce Minister Piyush Goyal said that the team from United States is in New Delhi to hold talks on finalizing the first phase of bilateral trade agreement BTA. The talks will take place in New Delhi from today and it will last till Thursday. India's chief negotiator is Darpan Jain, additional secretary in the Department of Commerce, while the US team is led by its chief negotiator Brendan Lynch. On 3rd of February, both sides announced the framework for the first phase of the BTA. The two sides have proposed to finalize the details of the interim agreement and take forward the negotiations under the broader BTA on multiple areas such as market access, non-tariff measures, customs and trade facilitation and investment promotion. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
8: BJP National President Nitin Naveen held a meeting with senior party office bearers and workers in New Delhi yesterday. Talking to media, party MP and spokesperson Dr. Sambit Patra shared key details highlighting discussions on the Narendra Modi government's 12 years of service, organizational expansion, and future initiatives aimed at broadening the party's outreach across various sections of society. He said that the government is completing 12 years in office, and everyone has witnessed how India has progressed under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, with advancement taking place across every sector. Mr. Patra said, "Today, the Bharatiya Janata Party and the NDA have been given the opportunity to serve in government in 2020.

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পাছতে 12 বজাত হিন্দীত আৰু 12:05 ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মে বিশাল শৰ্মা। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आदिवासी छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों से बात की। इस अवसर पर राष्ट्रपति उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: मैं हमेशा कहती हूँ, हम जिस स्तर से यहाँ तक पहुँचे हैं उसको भूलना नहीं चाहिए। आज बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े पोस्ट में हम रहे हैं। अपना अतीत को तो याद करते हैं, खुद के जैसा दूसरे इस चीज को ना झेले, इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर,

0: पॉल माशातेले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशातेले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमा की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमा से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का भी मुद्दा उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमा के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। CBSE ने कहा है कि यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका ₹100 और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न ₹25 का भुगतान करना होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। President Draupadi Murmu is addressing the tribal beneficiaries of the Ministry of Tribal Affairs flagship scholarship schemes at Rashtrapati Bhavan. We now go over live to the President's address.
3: कुछ ना करे क्या, कैसे करे, कैसे आगे जाए, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में आपको नैतिकता के साथ ही नहीं, नैतिकता को कभी भूलना नहीं है और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जनजातीय समाज के हमारे पूर्वजों ने अपनी संस्कृति और अस्मिता की रक्षा के लिए अनेक संघर्ष किए हैं और बलिदान भी दिए हैं, जैसे कि बिरसा मुंडा तो केवल ना है, लेकिन ऐसे बहुत सारे बिरसा मुंडा ये देश के लिए, मिट्टी के लिए, लेकिन उनका इतिहास में नाम नहीं है। बलिदान दिए हैं, ये प्रसन्नता का विषय है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय समुदाय की समृद्ध विरासत, अदम्य साहस और राष्ट्र निर्माण में उनके अमूल्य योगदान का सम्मान करने के लिए उद्देश्य क्या कहते जनजातीय गरिमा उत्सव मना रहे हैं।
2: The Ministry of Home Affairs has notified the Immigration and Foreigners Amendment Rules 2026, introducing key changes to registration timelines and the appeals mechanism under the Immigration and Foreigners Rules 2025. The amendment allows registration to be completed at any time before the expiry of 180

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम है 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अभी दिन के 12:10 हुए हैं। सैनिक भाइयों, मैं अमित बासकोटा आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के प्रसारण में।

सनी भाई, आपसे कुछ ही पल में हम प्रारंभ करेंगे आज के सुरीले गीतों का सुहाना सफर। पर उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

अब से कुछ ही पलों में हम आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम। 12:30 पर आप सुन पाएंगे आज का गीत। 12:38 पर गीत अपना धुन पर आए। 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार। सैनिक भाइयों 1:10 पर आप सुन पाएंगे एक ही फिल्म के गीत। 1:40 पर एक ही कलाकार के गीत।

2 बजे से आप बारी बारी से सुन पाएंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार और 2:30 पर आप सुन पाएंगे आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम गुंजन। और इसी के साथ आज के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे।

सैनिक भाइयों, आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है गजिनी फिल्म से, बेनी दयाल और श्रेया घोषाल की आवाजों में।

सैनिक भाइयों, अभी आपने सुना गजनी फिल्म का ये गीत। अब आइए सुनते हैं टू स्टेट्स फिल्म से ये गीत, अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीपदा की आवाजों में।

यह आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिष पर है। मीडियम एप 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। सैनिक भाइयों, अब आइए सुनते हैं आज का गीत। आज हमने लिया है मैं अनारी तू खिलाड़ी फिल्म से ये गीत, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

सैनिक भाइयों, अगला कार्यक्रम प्रस्तुत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हमेशा की तरह कल भी हमारे कार्यक्रमों का प्रसारण प्रारंभ होगा दोपहर 12:10 से। 12:12 पर फिल्म संगीत, 12:30 पर आज का गीत, 12:38 पर फिल्मी नगमे और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

सैनिक भाइयों, 1:10 पर आप सुन पाएंगे हमारा कार्यक्रम तरंग, 1:40 पर प्रादेशिक संगीत, 2 बजे से हम बारी बारी से सुन पाएंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। सैनिक भाइयों, 2:30 पर आप सुन पाएंगे हमारे प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम प्रीत लड़ी। इसी के साथ दोपहर 3 बजे समाप्त होगा हमारा कल का प्रसारण। तो ये थे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

यह आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मेरी एमएफ 289 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अब आइए सुनते हैं गीत अपना धुन पर आए। इस कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है बॉम्बे टू गोवा फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में।

सैनिक भाइयों, अभी आपने सुना शरारत फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। अब आइए सुनते हैं त्रिशूल फिल्म का ये गीत आशा भोसले और नितिन की आवाज़ों में।

यह आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अब से आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से भी सुन पाएंगे। मीडियम वेव 529.1 मीटर पर।

सनी भाइयों, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म के गीत। आज हमने लिया है परिणीता फिल्म के कुछ गीत। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का पहला गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं एक ही फिल्म के गीत कार्यक्रम, और आज आप सुन रहे हैं परिणीता फिल्म के कुछ चुनिंदा गीत। आइए सुनते हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में ये गीत।

सनी भाइयों, आप सुन रहे हैं एक ही फिल्म के गीत कार्यक्रम, और आज आपको सुना रहे हैं परिणीता फिल्म के कुछ चुनिंदा गीत। आइए सुनते हैं सुनिधि चौहान की आवाज में ये गीत।

यह आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। सैनिक भाइयों, अब आइए सुनते हैं एक ही कलाकार के गीत। आज हमने लिया है अभिजीत के गाए कुछ चुनिंदा गीत।

सनी भाई, आप सुन रहे हैं एक ही कलाकार के गीत, और आज आप सुन रहे हैं अभिजीत के गाए कुछ चुनिंदा गीत। अभी आपने सुना बड़ा दिन।

सैनिक भाई, आप सुन रहे हैं एक ही कलाकार के गीत कार्यक्रम, और आज आप सुन रहे हैं अभिजीत के गाए कुछ चुनिंदा गीत। अब आइए सुनते हैं गैंगस्टर फिल्म का ये गीत।

सनी भाई, आप सुन रहे हैं एक ही कलाकार के गीत, और आज आप सुन रहे हैं अभिजीत के गाने, कुछ चुनिंदे गाने। अभी आपने सुना गैंगस्टर फिल्म का एक गीत, अब आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का अंतिम गीत, हमेशा फिल्म से।

0: इस गीत के साथ ही एक ही कलाकार के गीत कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। सैनिक भाई, अभी दिन के 2 बजने को है, 2 बजे से आप बारी बारी से सुन पाएंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिडडे न्यूज। The headlines. President Draupadi Murmu addresses tribal beneficiaries of scholarship schemes at Rashtrapati Bhavan, emphasizes social, economic and educational progress of all sections of society for true development. Government notifies Immigration and Foreigners Amendment Rules 2026 with key changes in registration timelines and the appeals mechanism. Chief Justice of India Justice Suryakant administers oath of office to 5 new judges of the Supreme Court. Orange alert issued for thunder squall conditions in Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh today. And in women's cricket, third and final T20 international between India and hosts England to be played in Taunton tonight. President Draupadi Murmu has said that education is a powerful means of empowerment as it enables individuals to become self-reliant, aware and capable. Addressing the tribal beneficiaries of scholarship schemes in New Delhi today, the President said true development can only be achieved when all sections of society progress socially, economically and educationally.
2: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: The President highlighted that the government scholarship schemes have transformed the lives of tribals by enabling access to higher education and new opportunities. President Murmu emphasized that India has no shortage of talent and stressed on the need to identify, nurture and provide the right platform for it to flourish.
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं

0: to 3 days. Hot and humid weather conditions will prevail over entire northeast, including coastal Andhra Pradesh, Odisha and sub-Himalayan West Bengal today. On to sports and women's cricket, the third and final T20 international of the series between India and England will be played at Taunton in England tonight. The match will begin at 11 p.m. IST. The series is level with India winning the first match in Chelmsford by 38 runs and England levelling the series with a 26-run victory in Bristol. In hockey, India registered a commanding 4-1 victory over Korea in their third Pool A match of the Men's Under-18 Asia Cup in Kakamigahara, Japan. Captain Ketan Kushwaha scored in the third and the 36th minute. Varinder Singh and Shah Rukh Ali scored the other two goals. Korea's lone goal came through Captain Yoon Jae-hyuk. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu addresses tribal beneficiaries of scholarship schemes at Rashtrapati Bhavan, emphasizes social, economic and educational progress of all sections of society for true development. Government notifies Immigration and Foreigners Amendment Rules 2026 with key changes in registration timelines and the appeals mechanism. Chief Justice of India Justice Surya Kant administers oath of office to 5 new judges of Supreme Court. Orange alert issued for thunder squall conditions in Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh today. And in women's cricket, third and final T20 international between India and hosts England to be played in Taunton tonight. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आवर्जन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए, पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
2: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि

0: युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
1: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य के प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
0: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण, समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुने गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सीबीएसई ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की

0: प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है, उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला, जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रवर्तन निदेशालय ED मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ ये कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरू मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जनकेंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर आधा प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ

0: 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: समाचार के बाद सैनिक भाइयों, आप सभी का हमारे इस प्रसारण में बहुत बहुत स्वागत है।

यह आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम एफ 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। सैनिक भाइयों, अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम गुंजन। सैनिक भाइयों, इस कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं इजाजत फिल्म से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुंजन। आइए सुनते हैं बेवे हो तो ऐसी फिल्म से गीत, मोहम्मद अजीज और अनुराधा पेडवाल की आवाजों में।

सनी भाई, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुंजन और अभी आपने सुना बीबी हो तो ऐसी फिल्म से गीत अनुराधा पेडवाल और मोहम्मद आजीज की आवाजों में। अब आइए सुनते हैं लोफर फिल्म से गीत मोहम्मद रफी की आवाज में।

सैनिक भाइयों, इसी के साथ यह कार्यक्रम गुंजन यहीं पर समाप्त होता है और समाप्त होता है सैनिक भाइयों के लिए हमारा आज का प्रसारण। कल 12:10 पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे अमित बासकोटा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
1: नमस्कार अभिनंदन एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून। रेडियो डॉक्टर में मैं सुजाता रथ आपकी एंकर और हमारे एक्सपर्ट से आइए मिलते हैं, उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर जीवन सिंह तित्याल, डॉक्टर आरपी सेंटर फॉर ऑप्थैल्मिक साइंसेस एम्स। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार तमाम श्रोताओं को, मेरा हार्दिक नमस्कार।
1: तो डॉक्टर साहब आज का टॉपिक हम अपने सुनने वालों को बताते, हाउ टू प्रोटेक्ट योर आईज इन समर्स, गर्मी के दिनों में अपनी आंखों की सुरक्षा कैसे करें। तो डॉक्टर साहब आई एक्सपर्ट हैं, आंखों के विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, डॉक्टर जीवन सिंह तित्याल। तो डॉक्टर साहब जाहिर सी बात है कि आंखों की सुरक्षा तो हमेशा की जानी चाहिए, किसी मौसम से जुड़ी हुई बात तो ये है नहीं, क्योंकि आंख जो है वो ईश्वर की सबसे, मैं कहूं कि कीमती नेमत है, उपहार है जो हमें मिला है इस खूबसूरत जहां को देखने के लिए। तो डॉक्टर साहब लेकिन खास करके जो आज टॉपिक हमने चुना है कि गर्मियों के मौसम में हम आंखों की सुरक्षा करें, तो इसको आप किस तरह से समझाना चाहेंगे, गर्मियों में क्यों ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है डॉक्टर साहब आंखों की।
2: जैसा हम जानते हैं कि जैसे जैसे हमारे देश में सीजन्स चेंज होते हैं, उसी तरह से एक शारीरिक जो है समस्या भी साथ में चलती चली जाती है। जैसे गर्मी आती है तो आप जानते हैं वातावरण का टेम्परेचर बदल जाता है, हवाएं गर्म हो जाती है और कभी कभी साथ में गर्म लू चलती है, जिसके कारण से शरीर में बीमारी तो होती है, आंखों में भी बीमारी हो सकती है। इसमें हम जानते हैं कि छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बूढ़ों को भी जो है तकलीफ हो सकती है, जो लोग घर के अंदर रहते हैं उनको भी तकलीफ हो सकती है, और जो बाहर काम करते हैं जिन्हें भीड़ वाले

0: जिन लोगों को पहले से ही सूखापन की बीमारी होती है उनको बहुत ज्यादा कष्ट होना शुरू हो जाता है इस मौसम में। और कभी कभी हम जानते हैं कि दिल्ली और जितने भी हमारे जो बहुत ज्यादा जहां गर्मी होती है वहां पर एक बीमारी आ जाती है जिसे हम आई फ्लू या कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। ये बरसात में ज्यादा होती है लेकिन अभी से इसकी शुरुआत होनी शुरू हो गई है। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो शरीर में डिहाइड्रेशन हो सकता है, जैसे आप जानते हैं गर्मी में पसीना आता है, आप काम कर रहे हैं आपको पता नहीं चलता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसका असर भी आंख में पड़ता है। तो आपकी जो रोशनी होती है, जो नजर होती है दूर की या पास की, उसमें भी फर्क पड़ सकता है। हो सकता है चश्मे का नंबर आपको चेंज करना पड़ जाए। कुछ बीमारियां होती है जिसका कंट्रोल ठीक से नहीं हो पाता है गर्मियों में, जैसे आप डायबिटीज के मरीज हो या हाइपरटेंशन हो आपको, वो बीमारियां इस मौसम में जो है थोड़ी सी जो है अनकंट्रोल हो जाती है, उसका असर भी आंखों में पड़ सकता है।
1: जी तो सर, बहुत सारी आपने बातें बताई कि गर्मियों में खास करके आंखों की सुरक्षा की क्यों ज्यादा आवश्यकता है। चलिए डॉक्टर साहब से बहुत सारी बातें जानेंगे और बहुत सारी सुरक्षा के उपाय भी जानेंगे, लेकिन हम लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और डॉक्टर साहब आपकी फरमाइश पर जुबिन नौटियाल का गाया हुआ एक आंखों से रिलेटेड गाना ही मुझे मिल गया, तो चलिए सुन लेते हैं।

0: जी। और इसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर जीवन सिंह तित्याल, डॉक्टर आरपी सेंटर फॉर ऑप्थाल्मिक साइंसेस एम्स। तो डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें हमको शुरू में बताएं कि गर्मियों में क्या तो प्रॉब्लम्स हो सकती है आंखों की, तो क्यों गर्मियों में ज्यादातर सुरक्षा की जरूरत पड़ती है आंखों की, और कैसे देखभाल करें ये भी हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। लेकिन फिलहाल कॉलर्स हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं, डॉक्टर साहब आइए इनसे बात करते हैं। हेलो
1: हेलो हेलो,
0: हाँ जी पूछिए।
1: जी मैं गौतम कुमार बोल रहा हूँ, और ये गर्मी में हम लोग सिलाई करते हैं तो कैसे बचा जाए, क्या उपाय करना चाहिए?
0: हाँ जी,
2: मेरे गौतम जब आप सिलाई करते हैं तो हम जानते हैं कि सिलाई एक हो सकता है बंद कमरों में नॉर्मली होती है, वहाँ पर गर्मी रहती है और पसीना आता है
1: जी।
2: जब पसीना ज्यादा आता है तो उससे भी जो है आंखों में दिक्कत आ सकती है और चेहरे में भी जो है दाने हो सकते हैं पसीने के कारण। तो उसमें या तो हवादार कमरा हो या खिड़की हो जिससे कि हवा जो है बाहर निकल जाए, साफ हवा अंदर रहे। यदि आंखों में आपको जलन हो रही है जो कि सबसे ज्यादा कॉमन सिम्टम रहता है ऐसे लोगों के लिए, तो ऐसे में जो है एक सिंपल आर्टिफिशियल टीयर हम बोलते हैं उसको लगा सकते हैं, जैसे टीयर ड्रॉप्स बोलते हैं, उसको दो या तीन बार डालेंगे आंखों में तो आंख साफ हो जाता है। और साथ में करीब करीब दिन में दो या तीन बार हाथों को धो लीजिए और आंखों को भी चेहरे के साथ धोएंगे तो ये दिक्कत कम हो जाएगी पसीने की जो है।
1: और
2: पास के काम करने में दिक्कत आ सकती है, यदि साफ नहीं दिखता तो पास का चश्मा लगा के काम करना चाहिए।
1: ठीक है गौतम सर, नमस्कार सर।
2: ठीक है गौतम जी।
0: सर एक और कॉलर है। हेलो
3: हेलो,
0: हाँ जी बोलिए।
3: मैं विजय बहल बोल रहा हूँ गाजियाबाद से।
0: हाँ जी
2: नमस्कार, बोलिए पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका।
3: मेरा क्वेश्चन, मेरा पहले मैंने बात किया था डॉक्टर से, मेरे को मैकुलर डिजनरेशन की प्रॉब्लम है।
2: अच्छा,
3: सिंस लास्ट 25 ईयर्स।
2: ओके,
3: मैं इस बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ।
2: देखो विजय जी, मैकुलर डिजेनरेशन एक ऐसी बीमारी है जो एक बार हो जाए तो उसको रिवर्स या वापस नॉर्मल नहीं कर सकते हैं।
3: मुझे रिवर्स नहीं करवाना है।
2: उसमें जो है इलाज संभव है, उसके कुछ जांच हमें करने पड़ेंगे, रेटना का जो है स्कैनिंग हो सकता है या फिर एंजियोग्राफी कर सकते हैं। यदि उसमें कोई खून की नसें ग्रो कर रही है या फिर कोई ब्लड आ रही है तो आंखों में दो तरह के इलाज हो सकते हैं। जब सूजन होती तो हम आंखों में इंजेक्शन लगाते हैं जिससे कि सूजन कम हो जाती है और नजर बढ़ जाती है बहुत सारे लोगों की। यदि जो है सूजन बहुत ज्यादा ठीक नहीं हो रही तो उसके साथ में लेजर भी कर सकते हैं जिससे कि जो है सूजन एकदम से कम हो जाए। तो ये जानना जरूरी है कि बीमारी किस स्टेज में है, तो मैं चाहूंगा कि एक प्रॉपर आप चेकअप करा लें, गाजियाबाद एम्स के बहुत ही पास में है, कभी आकर के चेकअप करा लीजिए जिससे कि हम प्लानिंग कर सकें किस तरह का ट्रीटमेंट आपके लिए पॉसिबल है।
3: ठीक है, ठीक है,
2: थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम।
4: जी मैं जिला मुरादाबाद ग्राम बीबीपुर से मकसूद हुसैन बात कर रहा हूँ।
0: हाँ जी बोलिए।
4: मैडम मेरे जो है आंखों से जो है अब बहुत ही कम चमकने लगा है और आंख में थोड़ा सा ज्यादा सा भी दिखाई देता है।
2: आपकी उम्र कितनी है?
4: 54 वर्ष है सर।
2: अच्छा,
4: पहले से ही बचपन से ही मुझे कम दिखता था और अब जो है अब तो बिल्कुल ना के बराबर है मामला।
2: ओके, अब चश्मा लगाते थे?
4: कुछ नहीं लगाते थे।
2: अच्छा, देखो हुसैन जी 55 साल की उम्र आते आते कुछ बीमारियां जो है धीरे धीरे जो है खराब होती चली जाती हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि आपको कम देखने की बीमारी बचपन से ही थी, तो उसमें मुख्यतया जो है एक तो कारण होता है कि आंखों में चश्मे का नंबर रहा हो और उसको आपने उस समय चेक नहीं कराया, या पीछे का या आगे का पुतली या पर्दा खराब हो सकता है जो धीरे धीरे ज्यादा खराब होते चला जाता है, उसमें जो है रोशनी कम हो सकती है। अभी 55 साल की उम्र में आपकी रोशनी ज्यादा कम हो रही, तो साथ में या तो सफेद मोतिया आ रहा होगा या काला मोतिया भी हो सकता है, या फिर आप डायबिटिक होंगे तो पीछे पर्दे में डायबिटीज का असर भी आ सकता है। तो उसकी जांच करने की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं।
4: सर जांच कराई थी मैंने तो कॉर्निया भी और डिश वगैरह भी सब सही थी।
2: बहुत बढ़िया। हाँ
4: जी,
2: तो इसका मतलब ये है कि जो रेटिना है हो सकता है उसमें दिक्कत आ रही हो, तो एक प्रॉपर चेकअप करा लीजिए अच्छे हॉस्पिटल में। मुरादाबाद में भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन है आंखों के।
0: सर हमने बहुत सारे कॉलर्स को तो ले लिया, लेकिन हमारे व्हाट्सएप वाले जो लिसनर्स हैं वो इंतजार कर रहे हैं। चलिए एक दो मैसेजेस ले लेते हैं। सर SSP गुप्ता रांची से इन्होंने लिखा है कि मेरी वाइफ का कैटरेक्ट ऑपरेशन

यह इस विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू प्रोटेक्ट योर आईज इन समर्स, गर्मियों में आंखों की सुरक्षा कैसे की जानी

0: हुआ है 6 महीने पहले, तो उन्हें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए?
1: हाँ गुप्ता जी, आपका ये सवाल बहुत ही सुंदर और वाजिब है इस आज के प्रोग्राम के समय में। जहां तक कैटरेक्ट ऑपरेशन हो चुका है, 6 महीने हो चुके हैं, तो हम नॉर्मली ऐसे सिचुएशन में आदमी को नॉर्मल मानते हैं कि उसके कारण से कोई दुविधा नहीं आनी चाहिए। हाँ यदि आपके वाइफ को कोई और प्रॉब्लम है, जैसे मैंने शुरू में कहा था, यदि डायबिटीज हो या ब्लड प्रेशर हो या फिर सूखेपन की प्रॉब्लम हो जो कैटरेक्ट सर्जरी के बाद कभी कभी बढ़ जाती है, और गर्मियों में बहुत से लोग जो है एयर कंडीशन में बैठते हैं तब भी आपको जो है आंखों में सूखापन हो सकता है, बाहर निकलेंगे तो जरूर मैं चाहूंगा कि एक काला चश्मा या गॉगल्स लगा लें जिससे कि आंख में रोशनी कम जाएगी और उनको दुविधा कम रहेगी। इसके अलावा ज्यादा कोई प्रिकॉशन नहीं है, नॉर्मल की तरह एक्टिव रहिए और सारा काम करिए।
0: जी सर। सर आपने ड्राई आईज की बात कही तो एक मैसेज आया है मिसेस सुचित्रा रॉय का शांति निकेतन वेस्ट बंगाल से। इन्होंने लिखा है कि इनकी उम्र जो है 67 साल की है ये, और शी इज हैविंग ड्राई आई प्रॉब्लम और आई बॉल्स बिकम्स रेड, प्लीज एडवाइस।
1: ये जो आप कह रहे हैं कि ड्राई आई आपको है और आंखें लाल हो जाती है, तो इसका एक ही संकेत है या एक ही इसका कारण हो सकता है कि आपकी ड्राई आई काफी क्रॉनिक है। इसका मतलब बहुत समय से आपको ड्राई आई की बीमारी हो रही है, इस कारण से आंखें लाल हो जाती है। तो जो भी दवाइयां आप डालते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ानी पड़ सकती है। कभी कभी आंखों में ड्राई आई के साथ साथ में इन्फ्लेमेशन या सूजन आ जाती है जिसमें लाली ज्यादा हो जाती है। ऐसे में जांच करने के बाद थोड़े से लाइट स्टीरॉयड ड्रॉप डालेंगे तो लाली एकदम से कम हो जाएगी। ये डॉक्टर को दिखा करके उसके बाद ही इस दवाई को यूज करना चाहिए। दूसरा जो है, इस एज में और बीमारी भी हो सकती है जिसके कारण ड्राइनेस बढ़ सकती है, जैसे आपको थायराइड की बीमारी हो या आपके जोड़ों में दर्द हो जैसे आर्थराइटिस हो, तो ऐसे लोगों को ड्राई आई ज्यादा रहती है, तो उसकी भी जांच करा लें। यदि वो है, यदि उस बीमारी को कंट्रोल करेंगे तो ड्राई आई की समस्या भी काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी। हम जानते हैं कि ड्राई आई किसी को हो जाए तो बिल्कुल रिवर्सल या नॉर्मल लेवल में नहीं आ सकता है, लेकिन जो भी सिम्टम्स है, जो परेशानी है, उसको दवाइयां डाल करके या और इलाज करके उसको सुविधाजनक कर सकते हैं हम लोग।
0: तो डॉक्टर साहब, आपसे बहुत सारी बातें अभी होनी बाकी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त है कि हम आपकी पसंद का एक बहुत ही एवरग्रीन गाना जो है अपने श्रोताओं को सुनवाए। कहीं सुनवा दो सर।
1: जरूर जरूर।
2: नहीं नहीं,

0: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए।
1: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
0: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
1: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजे healthairdelhi@gmail.com पर।
2: How to protect your eyes in summers? गर्मियों के दिनों में आंखों की सुरक्षा कैसे की जानी चाहिए, हमारा आज का विषय है। रेडियो डॉक्टर में आपकी एंकर हूं मैं सुजाता रथ और हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर जीवन सिंह तित्याल, डॉक्टर आरपी सेंटर फॉर ऑप्थेल्मिक साइंसेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। डॉक्टर साहब, बात चल रही है कि गर्मियों के मौसम में आंखों की सुरक्षा कैसे की जाए, तो चलिए इसी बात पर आते हैं कि गर्मियों के दिनों में हम जब बाहर निकलें, घर से बाहर निकलें, तो क्या क्या हमको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, आंखों को किस तरह से सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
3: इसमें 2-3 चीजों की आवश्यकता हमें पड़ती है। एक तो ये ध्यान देना जरूरी है कि आंखों में रोशनी ज्यादा ना पड़े या फिर गर्मी की हवा ना पड़े, तो उसके लिए गॉगल्स जो है लगाना बहुत जरूरी है। जैसे हम कॉमन भाषा में धूप का चश्मा कहते हैं, वो लगाना जरूरी है। और साथ साथ में आप जो है हैट या कैप ऊपर से लगाएंगे तो उसके साथ में भी जो है आंखों में रोशनी कम पड़ती है और प्रोटेक्शन हो जाती है। ये जरूरी है कि यदि आप कहीं भीड़ वाले एरिया में जा रहे हैं तो वहां पर ये प्रिकॉशन जरूर रखना है कि लोगों को भी ध्यान रखना कि चोटें लग जाए आंखों में, क्योंकि गर्मी में लोगों को जो है डेफिनेटली जो है चोट लगने के चांसेस ज्यादा रहती है, कि ट्रैवलिंग भी डिफिकल्ट हो जाता है। और यदि लंबे समय के लिए आप बाहर निकलें तो साथ में पानी का बॉटल साथ लेके जाइए, क्योंकि कभी कभी आंखों में कुछ गिर गया या आपको आंखों में जलन हो रही है तो साफ पानी से आंख धोएंगे तो उससे भी आराम हो जाता है, क्योंकि वहां पर कोई एंटीबायोटिक या आंखों की ड्रॉप्स इमिडिएटली मिल नहीं सकती है, तो पानी जो है बहुत अच्छा एक इलाज हो सकता है ऐसे समय में। दूसरा जो है, यदि आप कोई आंखों में दवाई डालते हैं जैसे काला मोतिया का दवाई हो तो साथ में लेके चलें, जिससे कि आपकी दवाई की टाइमिंग खराब ना हो जाए, क्योंकि कुछ दवाइयां ऐसी होती है सही टाइम में डालना उसको अति आवश्यक होता है। यदि आपको चश्मा ऐसे ही लगाया जैसे दूर का चश्मा लगाया तो उसको जरूर लगाएं, उसके ऊपर से आप जो है धूप के चश्मे का या तो फ्लैप लगा सकते हैं, आजकल मिलते हैं बहुत सारे फ्रेम जिसके ऊपर से जो है धूप के चश्मे का फ्लैप लगा सकते हैं, या फिर जो आपका धूप का चश्मा उसमें भी नंबर का चश्मे का शीशा लग सकता है जिसमें आपको देखने की सुविधा हो सकती है।
2: जी सर। सर व्हाट्सएप मैसेज है, मध्य प्रदेश से आया है ये, मृत्युंजय कुमार, ये शिक्षक है गया बिहार से है ये मैसेज सर, कि लिखते हैं कि मैं एक शिक्षक हूं, विद्यालय में ब्लैक बोर्ड पर काम करते समय डस्ट का सामना करना पड़ता है, क्या ये आंखों को नुकसान कर सकती हैं, अगर करती हैं तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए और धूप से बचने के लिए आंखों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये बात तो अभी आपने बताई धूप वाली बात, लेकिन इनकी जो दूसरी बात है बहुत इंपॉर्टेंट है।
3: बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल भी हमारे जो स्कूल्स है वहां पर ब्लैक बोर्ड और चौक का इस्तेमाल होता है, लेकिन बड़े सारे शहरों में अब इसकी जरूरत नहीं पड़ती, इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। लेकिन हम जानते हैं कि जो चौक यूज करते हैं उससे आंखों में एलर्जी या जलन हो सकती है, उसके जो कण है वो फैल जाते हैं, ब्लैक बोर्ड जब साफ करते हैं आप या जब लिखते हैं तो आंखों में जा सकते हैं, और लंबे समय तक लगातार यदि गिरते रहें तो आंखों में एलर्जी हो सकती है, उसमें बार बार आंखों में खुजली होना या दर्द होना या फिर पानी आना और लालीपन होना जो है हो सकता है। तो ऐसे में जैसे मैंने शुरू में कहा था, एक तो आंखों का आप धो सकते हैं साफ पानी से या फिर

0: आर्टिफिशियल टीयर लगातार डाल सकते हैं। यदि आप जो है वो लगता है कि आंखों में चौक चला गया या पाउडर चला गया, तो इमीडिएटली कोई भी जो साफ पानी हो, रनिंग वाटर हो, उससे आंख धो लेंगे तो आपकी समस्या दूर हो सकती है। दूसरा ये है कि तो एक चश्मा लगा के आप काम करेंगे तो डायरेक्टली आंखों में नहीं गिरेगा। और कभी कभी जैसे शुरू में कहा था, गर्मी के बचाव के साथ साथ में स्कूल में भी जो है आप एक हैट लगाएंगे तो उससे भी जो है चीजें डायरेक्टली आंखों में नहीं गिरेंगी।
1: कॉलर है सर, हेलो
2: हेलो अनूप फ्रॉम रांची। हेलो,
1: हाँ सुनाई दे रही है। अनूप जी बोलिए
2: सर। धूप में ना चकाचौंध सा होता है और आई में ड्राइनेस है। आई एम 52 इयर्स ओल्ड, डायबिटिक एंड बीपी 2।
0: हाँ हाँ हाँ, ये सारे बात हम डिस्कस कर चुके हैं अनूप जी, लेकिन आंखों में चकाचौंध होना जो है ड्राइनेस के कारण भी होता है। कभी कभी आपका चश्मे का नंबर सही न हो उससे भी होता है। आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज में भी कभी कभी जो पर्दे में सूजन आ सकती है तो उससे भी चकाचौंध हो सकता है। या फिर करीब करीब शुरुआत हो रही हो मोतियाबिंद की, उसमें भी बहुत सारे लोगों को जो है रोशनी में दिक्कत आती है। तो यदि आपको ये दिक्कत आ रही है तो एक चेकअप जरूर कराइए आप, जिससे कि
2: एक्चुअली क्या कारण है पता चल जाए। जी सर,
0: और दवाइयां जरूर डालिए ड्राइनेस की आप।
2: जी सर,
0: बहुत बढ़िया, थैंक यू।
1: सर आपने बताया कि धूप में निकलते वक्त हमें सनग्लासेस, गॉगल्स का इस्तेमाल करना चाहिए और पानी के छींटे मारने की बात की, तो सर ये सनग्लासेस जो है इसकी क्वालिटी को लेकर बहुत बातें कही जाती है कि अच्छी क्वालिटी की ही होनी चाहिए, यूवी रेस से प्रोटेक्ट करने वाली। पता नहीं ये मार्केटिंग की बातें हैं या क्या, इस बारे में थोड़ा सा क्लियर हमको बताइए।
0: दो चीजें हैं, दो तरह के सनग्लासेस हो सकते हैं। एक ऐसे सनग्लासेस होते हैं जो यूवी रेस को जो है ब्लॉक करते हैं। इसकी जरूरत वहां पर होती है जहां पर यूवी रेडिएशन ज्यादा होता है, जैसे आप सी शोर में समुद्र के किनारे में जा रहे हो या फिर आप पहाड़ों में जा रहे हो जहां बर्फ पड़ता है, तो वहां पर यूवी रेडिएशन बहुत ज्यादा होता है। तो यूवी ए ब्लॉकिंग जो है स्पेक्टिकल या गॉगल चाहिए होंगे। दूसरा होता है कॉमन जो है धूप से बचाव के लिए, तो उसमें शेडेड लेंस भी चल जाते हैं। नॉर्मली लोग जो है ऐसे कलर लगाते हैं जिससे आपको सूदिंग इफेक्ट आ जाए। तो आप चाहेंगे तो ग्रे कलर के या थोड़े से लाइट ब्लू टिंच वाले गॉगल्स ले लेंगे, तो इसमें पावर नहीं होता है और ये बड़े स्मूथ लेंसेज होते हैं, इसमें कोई पावर नहीं होना चाहिए। कभी कभी लेंसेज ऐसे बन जाते हैं जिसमें उसकी बनावट ऐसी होती है कि उससे लाइट के रेज जो है डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, तो आपको देखने में दिक्कत आ सकती है, तो उस चीज को अवॉइड करना चाहिए। और साथ में फ्रेम ऐसा होना चाहिए कि जो हल्का हो, जिससे आपके चेहरे में उसका दबाव नहीं पड़े, कानों के ऊपर दबाव नहीं पड़े, बिकॉज गॉगल्स जो है थोड़े बड़े साइज के होने चाहिए।
1: जी, जी।
0: तो फ्रेम हल्के रखेंगे तो आपको सुविधा रहेगी।
1: हम तो स्टाइल के लिए पहनते
0: हैं सर। हाँ, स्टाइल के लिए भी जो है फ्रेम भी बन सकती है
1: जी।
0: लेकिन हमेशा लाइट होनी चाहिए जिससे आपके चेहरे में दबाव नहीं पड़े, नहीं तो उसके कारण से भी आंखों में दर्द और सर में दर्द हो सकता है।
1: जी सर, तो स्टाइल से ज्यादा ये आंखों की प्रोटेक्शन के लिए।
0: सही कह रहा हूँ
1: सर। हाँ, पानी की मैंने बात की। कई बार हम देखते हैं कि लोग जोर जोर से आंखों में जो है ठंडे पानी की छींटे मारते हैं, तो एक बार एक आंखों के डॉक्टर साहिबा ने मुझे बताया कि कभी भी आंखों में जोर से छींटे नहीं मारनी चाहिए सर।
0: नहीं, आंखों के जब छींटे हम कहते हैं तो वो जो है बंद आंखों में मारने चाहिए। आपके जो आंखों के पलके हैं बंद होने चाहिए, उसके ऊपर जो है पानी डालनी है। हम डायरेक्टली आंख में पानी के छींटे कभी नहीं कहते हैं डालो, क्योंकि उससे जो है आंखों में नुकसान हो सकता है। आंखों के जो पुतली है बहुत ही नाजुक होते हैं, कभी कभी उन छींटों से ही उसमें जो है जख्म हो सकता है। और पानी आप हमें पता है कभी जो है 100% प्योर और साफ नहीं होता है, तो डायरेक्टली कभी आंखों में छींटे नहीं मारना चाहिए। यदि आंखों में धोना भी है तो बंद आंखों से आप पानी डालेंगे तो धीरे धीरे पानी जो है अंदर चले जाएंगे, वो पानी फिर बाहर अपने आप निकल जाएंगे। तो आंखों में भगवान ने दो पलके बना रखी हैं जो अंदर से अपने आप सफाई कर देती है।
1: तो तरीका जो है सही होना
0: चाहिए। हाँ, सही कह रहे
1: हैं। एक व्हाट्सएप मैसेज है, ये 69 साल के हैं, आरपी शर्मा जी हैं, लिखते हैं कि आई गॉट माई आईज चेक्ड एट एम्स एंड देयर इज सूडो होल इन द राइट आई। तो दोनों आंखों में इनका कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो चुका है सर। प्लीज टेल, इज देयर एनी ट्रीटमेंट फॉर सूडो होल?
0: जी शर्मा जी, आपने तो काफी ज्ञान वाली बातें बताई, इसका मतलब कि आपका जांच बहुत अच्छी तरह से हुआ है। सुडो होल में जो है नॉर्मली हम लोग कोई सर्जरी करते नहीं है कि ऐसे मरीज

0: चीज़ों की जो नज़र होती है, जो विज़न होती है, ठीक ठाक होती है। और जो होल की सर्जरी हम तब करते हैं जब ये होल पूरा कंप्लीट होल हो जाता है, या ट्रू होल हो जाता है, या फिर नज़र कम हो रही हो, या पर्दे में जो मेम्ब्रेन होती है उसमें ट्रैक्शन या खिंचाव हो रही हो, तब ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जैसा आपने बताया, आपने लिखा नहीं कि आपकी नज़र कितनी है, क्योंकि आजकल जो भी सर्जरी हम करते हैं नज़र को साफ करने के लिए करते हैं। यदि आपकी नज़र अच्छी है तो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, यदि नज़र कम होती जा रही है तो ज़रूर एक चेक कराइए, जिससे कि पता चल जाए कि होल में कोई प्रोग्रेशन तो नहीं हो रहा है, तो उसका इलाज करना पड़ेगा, संभव है इसका इलाज।
1: जी, यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज हम ले लेते हैं। मुनीश पाल उत्तराखंड से सर लिखते हैं कि मेरी आईज जो है मटमैली सी हैं, पीली सी लगती हैं, तो क्या करूं मैं?
0: तो इसका तो कोई खास इलाज नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो जो सफेद पार्ट होता है, जिसे हम कंजंक्टिवा कहते हैं, उसमें पिगमेंटेशन आ जाती है। वो जो है बचपन में आपको एलर्जी रही हो, उससे भी पिगमेंटेशन हो जाता है। कभी कभी आंखों की जो कलर होती है वो आपके हेरिडिटरी होती है, तो इसको जो है साफ नहीं कर सकते हैं, ये आपकी जो है एक पहचान हो जाती है। तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, इससे आपको देखने में या आंखों में कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक चेकअप करा लीजिए पर्दे का। कभी कभी क्या होता है कि आपको विटामिन की डिफिशेंसी हो सकती है, जिससे कि आंखों में मटमैलापन आ सकता है, और साथ में पीछे पर्दा भी खराब हो रहा होता है विटामिन, स्पेशली विटामिन ए डिफिशेंसी की। तो मुझे लगता नहीं कि आपको कोई बीमारी है, ये डिस्कलरेशन बहुत सारे लोगों को हो जाता है। एक जरूर अपने चश्मे का नंबर चेक कराइए और पुतली का चेकअप करा लीजिए, उसमें कोई बीमारी तो नहीं है।
1: जी, हेलो।
2: हेलो, नमस्कार मैम।
1: हाँ बोलिए, नमस्कार, नाम बताइए।
2: मैं मोहम्मद रेहान, वेस्ट बंगाल जिले उत्तर दिनाजपुर से बात कर रहा हूँ।
1: हाँ जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं?
2: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए डॉक्टर को धन्यवाद।
1: हाँ शुक्रिया,
0: थैंक यू,
1: शुक्रिया।
0: थैंक यू। कुछ पूछ
2: डॉक्टर साहब, मुझे जानकारी ये चाहिए कि जब मैं छोटा था, 6-7 साल की उम्र में मेरी तबीयत खराब हो गई थी।
0: हाँ हाँ
2: तो डॉक्टर ने दवाई दी, दवाई की रिएक्शन की वजह से मेरा आँख खराब हो गया था, दोनों आँख। तो अब मेरी उम्र लगभग 20 साल है, तो एक आंखों से मैं रोशनी पता करता हूँ, जैसे रात होती है रात पता चलता है, अभी रात है, अंधेरा है, और जब दिन आ जाता है तो पता चलता है कि अभी दिन है, उजाला है, और लैब की रोशनी पता चल जाता है। इसमें कोई सोल्यूशन है क्या, कोई उपाय है कि मैं जिस तरह पहले देख रहा था उस तरह देख पाऊँ?
0: आपकी दूसरी आंख कैसी है?
2: एक आंख, दूसरी आंख जो ओपनिंग बैठ गया उससे कुछ पता नहीं चलता।
0: अच्छा,
2: और एक आंख से रोशनी पता चलता है, सिर्फ उजाला, लाइट की रोशनी, और दिन होता है तो उतना चलता है, दिन है।
0: अच्छा, ये तो बड़ी खेत की बात है कि आपको दवाई की जो है रिएक्शन हो गई है। इसमें क्या होता है कि पूरे शरीर में जो है रिएक्शन हो जाता है, फफोले पड़ जाते हैं, आंखों के पर्दे भी खराब हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली आपके साथ ये हुआ है। तो नॉर्मली जो है इसका इलाज सही टाइम में हो जाए इमिडिएटली, तो कभी कभी आंखों का बचाव कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको 14-15 साल हो गए इस अटैक को, तो मुझे लगता है जो आपकी एक आंख जो थोड़ी जिसमें रोशनी दिख रही है, उसमें हो सकता है कि जो आगे की पुतली है पूरी खराब हो गई हो, जिसमें रोशनी अंदर नहीं जा रही हो। आजकल हम लोग जो है ऐसे मरीजों का या तो ऊपर की पुतली जो है साफ कर देते हैं, या कभी कभी जो है हम जो है इसमें आर्टिफिशियल आई या प्रोसेसेस डाल देते हैं, जिसके थ्रू भी आप देख सकते हैं। तो उसका एक चेकअप करना पड़ेगा हमें, पीछे आपका पर्दा और नस सही है तो आगे से हम जो है प्रोस्थेटिक आई लगा सकते हैं, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं।
2: और डॉक्टर साहब, मैं 2-3 मरतबा नेपाल भी गया था, डॉक्टर को दिखाए थे, तो डॉक्टर बोल रहे थे इससे ज्यादा रोशनी नहीं आएगी।
0: नहीं, इसका इलाज जो है नेपाल वाले हॉस्पिटल में इसका संभव नहीं है। इंडिया में भी 3-4 हॉस्पिटल ही है जहां पर ये जो है आपको जो है आई लग सकती है, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं।
2: कौन सा हॉस्पिटल सर, नाम बताइए।
0: दिल्ली में आ सकते हैं, दिल्ली में एम्स का जो आई हॉस्पिटल है, या फिर आपको चेन्नई में जाना पड़ेगा शंकर नेत्रालय में, वहां पर दो जगह अच्छे इलाज हो सकते हैं आपको। यदि पीछे पर नस में जान है तो ये ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं।
1: जी सर, एक और कॉलर है। हेलो।
3: हेलो,
1: हाँ जी पूछिए।
3: नमस्कार।
1: नमस्कार, नमस्कार
3: डॉक्टर साहब। नमस्ते।
0: नमस्ते भैया।
3: डॉक्टर साहब, मैं आरपी पेशेंट हूँ, कुछ हमारा भी है समस्या का समाधान कुछ।
0: आपको पता है कि
3: सर ये है कि सिर्फ 7-8% रोशनी बची है, बहुत परेशानी हो रही है, बच्चे ले जाते हैं इधर उधर, बड़ी प्रॉब्लम में होंगे, कुछ है समाधान जो मतलब जितना जितनी रोशनी है यही रुक जाए यहीं पर, बट आपको जो जो दिखता है क्लियर दिखने लगे ऐसा कुछ है?
0: आपको बताइए कि इसका कोई खास इलाज अभी तक निजात इसका नहीं हुआ है, और अनफॉर्चुनेटली धीरे धीरे जो है नस खराब हो जाती है और रोशनी खत्म होने लगती है। तो इतने सालों में आपको इतनी ये बीमारी चल रही है, तो कोई रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम करना आपको चाहिए था या कर रखा होगा आपने, जिसके द्वारा आप जो है ना आगे की जो है लाइफ बिता सकते हैं? जहां तक मॉडर्न इलाज है वो इंडिया में संभव नहीं है, विदेशों में कुछ ट्रायल्स हो रहे हैं जिसमें हम रेटिना ट्रांसप्लांट कर देते हैं, वो इंडिया में अभी तक शुरू नहीं हुआ है।
1: जी सर, एक व्हाट्सएप मैसेज है और लिखने वाले हैं धर्म भाटिया रोहतक से, मिसेस धर्म भाटिया फ्रॉम रोहतक। इन्होंने लिखा है सर कि इनकी दोनों आंखों में लेंस लगे हुए हैं, दूर और नजदीक का चश्मा अलग अलग है दोनों का। पूछना चाहती है कि जब ये बाहर निकलें धूप में तो अपनी नजर वाला चश्मा पहने या गॉगल्स पहन सकती हैं? सर
0: नहीं नहीं भाटिया मैडम, ये तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जब आप बाहर निकलते हैं तो दूर का चश्मा लगाइए कि उसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है, और साथ में पास वाला चश्मा भी अपने पर्स में या जेब में रख लें, जिससे कि सपोज आपको कोई चीज पढ़ना या बिल देखना हो या मार्केटिंग कर रहे हो तो वहां पर आराम से पास के चश्मे से पास का देख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको दूर का चश्मे की जरूरत पड़ेगी, उसको जरूर साथ में लेके चलिए आप।
1: जी तो जो बात सर मैं भी पूछना चाहूंगी यहाँ पर, जो लोग लेंस का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी वही गाइडलाइंस हैं जो नॉर्मल आंखों वालों के लिए? सर
0: नहीं, उनके लिए तो और भी ज्यादा जो है प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, क्योंकि लेंस जो कॉन्टैक्ट लेंस जो आंख में लगाते हैं, हम जानते हैं एक तरह से ये फॉरेन बॉडी है आंख के ऊपर, तो इसमें जो पुतली के जो जैसे मैंने बताया था एक थिन लेयर बनती है जिसे टीयर फिल्म कहते हैं, वो कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर भी बनती है, इसलिए जो है कॉन्टैक्ट लेंस ड्राइनेस ज्यादा जल्दी हो जाता है, तो उन लोगों को एलर्जी भी ज्यादा हो सकती है, ड्राइनेस ज्यादा हो सकती है, तो उन लोगों को और भी ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, क्योंकि आंखें ड्राई ना हो जाए, और कॉन्टैक्ट लेंस जो है जो प्रिस्क्राइब टाइम होता है उतना ही पहने, ज्यादा टाइम नहीं पहने, डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंस हो तो और भी ज्यादा है। कॉन्टैक्ट लेंस के साथ में भी आप गॉगल्स लगा सकते हैं जिससे कि आपको सुविधा रहेगी।
1: जी सर, और अब यहाँ पर हम सर एक ब्रेक लेंगे संगीत का, और अब मैं आपके फेवरेट सिंगर जुबिन नौटियाल की आवाज में गाना प्ले करने जा रही हूँ सर।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए।
1: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
0: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
1: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजे healthairdelhi@gmail.com पर।
2: और विषय आज का है कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर आईज इन समर्स, गर्मियों के मौसम में आंखों की सुरक्षा कैसे की जानी चाहिए। तो एक बात जो हम सभी जानना चाहेंगे सर, कि गर्मियों के दिनों में अक्सर लोगों के पास बहुत समय होता है, छुट्टियां होती है बच्चों की भी और बड़े भी, एक तरह से अगर वो स्कूल कॉलेजेस में है तो टीचर्स की छुट्टी होती है, तो ऐसे समय में ज्यादातर लोग अपने पेरेंट्स का इलाज करवाते हैं, उनकी आई सर्जरी करवाते हैं, या जो बच्चे होते हैं उनको भी लेकर वो अगर उनको भी आंखों की सुरक्षा के उपाय के बारे में बताते हैं। तो सर पेरेंट्स की बात करें तो क्या इस दौरान, इस सीजन में जो सर्जरी की बात आती है, तो सर आप क्या सलाह देंगे कि क्या ये सही सीजन है?
3: हाँ हाँ, जहाँ तक ऑपरेशन का सवाल है, ज्यादातर कैटरेट का ऑपरेशन होता है। हम जानते हैं कि ये जो है 60 साल के ऊपर वाले लोग नॉर्मली होते हैं, यदि उनको कोई और बीमारी नहीं हो, जैसे मैंने कहा था डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, यदि बीमारी ये कंट्रोल में हो तो कैटरेक्ट सर्जरी आराम से संभव है। जैसे कि अब मैंने शुरू में कहा था कि ये मौसम ऐसा है कि अब यदि बाहर नहीं निकलेंगे तो सारे कंफर्ट में रहेंगे घर के अंदर जो है, और बूढ़े लोग जो हैं जिनको ऑपरेशन हो जाता है तो घर में ही रहते हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। लेकिन हाँ, जो हॉस्पिटल में जाएंगे तो प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ ना कुछ बीमारियां इस सीजन में चलती रहती हैं। डिहाइड्रेशन जैसे मैंने कहा था, ओल्ड एज में बहुत शीघ्र हो सकता है, तो जहां भी जाएं ऐसे जगह पर जाएं कि वहां भीड़ कम हो, और साथ में सारी सुविधाएं जो है आप साथ लेके चलें, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे जगह में आपको लंबा वेट करना पड़े, वहां पर पानी और खाने पीने की सुविधा कम हो, तो ये भी हमारे पेरेंट्स के लिए हमें सोच के चलना चाहिए कि ये सुविधा उनको हो। आजकल ऑपरेशन की पद्धतियां इतनी मॉडर्न हो गई हैं कि ज्यादा दुविधा होती नहीं है, तो नॉर्मली यस ऑपरेशन करा लेना चाहिए, लेकिन थोड़ा प्रिकॉशन रखना बहुत जरूरी है। दूसरा आपने कहा था बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की स्कूल की छुट्टियां इसमें हो जाती हैं,
2: वो घर में बैठे बैठे बहुत हड़दंग मचाते हैं, बहुत सारे उठा पटक बैठे करते हैं, तो ऐसे में उनकी आंखों की चोट लग सकती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है।
3: हाँ, तो इसमें जो है एक दो तरीके से है, एक तो समय का सदुपयोग करना, तो हम जानते हैं कि नॉर्मली पेरेंट्स जो है एनुअल चेकअप जो है समर वेकेशन में कराते हैं, तो ये अच्छा टाइम है। लेकिन जैसे आपने सही कहा कि कभी कभी घर में बच्चे बैठे रहते हैं तो आपस में खेलते हैं तो चोट लग सकती है, क्योंकि बाहर गर्मी होती तो बाहर जा नहीं सकते, तो उसके लिए भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को जो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट से या खेलने की चीज से चोट लग सकती है। दूसरा, बच्चे जो है इस टाइम में काफी ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक्सपोज रहते हैं, या फिर आप टैबलेट्स में रहेंगे या लैपटॉप में या कंप्यूटर में या मोबाइल फोन में इनकी क्लासेस टीचिंग ये रहती, तो उसके लिए भी समर वेकेशन में वो ब्रेक में होना बहुत जरूरी है, जिससे कि लोग जो है उनकी आंखें जो है ठीक हो जाए। कि हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को आंखों में दर्द होना, उनके चश्मे का नंबर चेंज हो जाना, सर में दर्द रहना, ये बड़ा कॉमन सिम्टम इस बीच में हो गया था। तो मैं चाहूंगा कि पेरेंट्स जो ये सुरक्षित अपनाएं कि उनके बच्चे कंप्यूटर और लैपटॉप से दूर हो जाएं इस टाइम में, और पूरा वेकेशन एंजॉय करें।
2: जी सर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग

0: सवाल आया है व्हाट्सएप मैसेज का, राकेश कुमार सोनी उत्तर प्रदेश से है, बस्ती डिस्ट्रिक्ट से लिखा है इन्होंने सर, कि लिखते हैं मैं टोटली ब्लाइंड हूं और पेरिस से एक समाचार मुझे सुनने को मिला है कि ब्लाइंड्स को कोई आर्टिफिशियल माध्यम से दिखाया जा रहा है, तो क्या ये बात सच है सर?
1: नहीं, ये बात सच है क्योंकि ऐसे रिसर्च पिछले कई सालों से हो रहे हैं कि कैसे हम ब्लाइंड लोगों को जो है कुछ ऐसे देखने की सुविधा प्रदान कर सकें। इसमें जो है एक कैमरा सिस्टम चिप जो है लग जाता है आंखों में, जिसके द्वारा इमेज जो है ब्रेन में चला जाता है, तो बिल्कुल साफ अभी तक दिखाई नहीं देता, लेकिन आपके सराउंडिंग एक या दो मीटर के डिस्टेंस में आपको जो है इमेजेस पता चल जाते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि क्या आपके सामने है। और आने वाले 10-15 सालों में ये सिस्टम और ही इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे नया ये सिस्टम बनेगा उसमें इतने सारे रिसर्च हुए हैं तो उसका जो कॉस्ट होगा वो भी काफी ज्यादा होगा, तो बड़े सारे लोगों को इसकी सुविधा मिलनी जो है इंडिया में तो एटलीस्ट दिक्कत आएगी इसके लिए,
0: लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि कॉस्ट
1: डेफिनेटली, अब बहुत से ऐसी चीजें बन रही हैं जो आपको जो है एक तरह से होलोग्राफिक इमेज दिखा सकते हैं, आपके ब्रेन में इमेज बन सकती है डायरेक्टली, क्योंकि ऐसे ऐसे सिस्टम जो है पिकअप करके आपको ब्रेन में ऐसे सिस्टम बन जाती है जिससे कि आपको दिखाई देना संभव है फ्यूचर में।
0: हम लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: सर एक कॉलर हैं। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी बोलिए।
1: हाँ जी नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते बोलिए।
1: रघुविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ सुभाष नगर से।
0: रघुविंदर
1: साहब को भी नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: मेरा सवाल ये है कि 2020 में मेरी दोनों आईज का कैटरेक्ट का सर्जरी हुआ था। बाकी सब तो ठीक है, मेरा चश्मा भी बन गया है नजदीक का, लेकिन जब भी मोबाइल यूज करता हूँ या टीवी देखता हूँ तो आंखों से पानी आने शुरू हो जाता है, तो सर कुछ बताएं क्या करूँ?
2: हाँ, ये जो है बहुत ही कॉमन समस्या है सभी लोगों को, आपको ही नहीं, जिन्होंने ऑपरेशन करा रखा उनको ही नहीं, और लोगों को भी जो है पानी आना जो काफ़ी कॉमन है, स्पेशली जो है दिल्ली के आसपास में जो पोल्यूशन है और जो हीट है उसके कारण से। लेकिन दो तीन चीज़ें हो सकती है, एक तो जो है आपकी जो पलकें हैं उसमें सूजन हो, जिसे हम बीमारी जिसे कहते हैं MGD हो, या फिर थोड़ी सी ड्राइनेस हो, क्योंकि जब भी आप जो है मोबाइल में काम करेंगे तो आपके पलकें जो है झपकती नहीं है जितनी हम चाहते हैं, तो उससे भी ड्राइनेस बढ़ सकती है, तो वाटरिंग रिफ्लेक्स टियरिंग हो जाती है। तो मैं चाहूंगा जब भी आप मोबाइल में काम कर रहे हो तो हर 15-20 सेकंड में जानबूझ करके पलकें झपकिए, जिससे कि टियर फिल्म स्प्रेड हो जाएगी और आपको जो है पानी आना कम हो जाएगा। यदि पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है तो कभी कभी हम पानी का रास्ता चेक करते हैं कि ब्लॉक तो नहीं है कहीं पर, तो उसके भी जो है इलाज हम लोग कर सकते हैं
0: जी।
1: थैंक यू,
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सर नागपुर से SNL दास जी का व्हाट्सएप मैसेज है, इन्होंने लिखा है कि आई गॉट माय कैटरेक्ट्स ऑपरेटेड ऑन बोथ द आईज विद इंपोर्टेड लेंस 8 years बैक। आई डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम टिल नाउ, शुड आई नीड पीरियोडिकल चेकअप?
2: देखो, जहाँ तक कैटरेक्ट ऑपरेशन जो लेंस लगता है वो तो लाइफ लॉन्ग के लिए होता है, कभी कभी जो है लेंस के पीछे जिसके ऊपर हम लेंस रखते हैं वो झिल्ली जो है थोड़ी सी हेजी हो सकती है, जो आपके केस में नहीं हुई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम जानते हैं ये ऐसा एज ग्रुप है जिसमें कुछ न कुछ बीमारियां हो सकती है, जैसे शुरू में हमने कहा था डायबिटीज हो सकता है, उससे पर्दे में खराबी आ सकती है, काला मोतिया डेवलप हो सकता है, या फिर एक कॉलर ने हमें पूछा था मैकुलर डीजनरेशन, ये सब हो सकता है। तो फिर भी साल में एक बार अपने डॉक्टर से आंखों का चेकअप जरूर कराना चाहिए हर आदमी को
0: जी। सर एक बहुत कम समय रह गया सर। हेलो
3: डॉक्टर, नमस्कार।
2: नमस्कार भैया,
3: राजेश खन्ना हैप्पी ईश्वर कॉलोनी जलंधर पंजाब से।
0: हाय हैप्पी जी, कम शब्दों में बताइए क्योंकि समय बहुत कम है।
3: कम शब्दों में यही है कि मैं अपने स्पेक्स हटाना चाहता हूँ क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने में प्रॉब्लम आती थी, मैंने स्पेक्स लगा ली है, बाकी सब परेशानी ठीक है। डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ, स्पेक्स मुझे अजीब सी लगती है, इसके जो मुझे बर्ड बोलने जो लेंसेज होते हैं जो अंदर से स्पेक्स हट जाए, अंदर जो लगते हैं जो वो कामयाब है या नहीं है, मेरी बात समझ गए होंगे आप।
2: हाँ जी, समझ गए हैप्पी जी, पहले तो मेरा नमस्कार लीजिए आप।
3: नमस्कार,
2: आप हो रही मेरी,
3: थैंक यू सर डॉक्टर।
2: जहाँ तक जो है आजकल जो पास के नंबर की सबको दुविधा रहती है, फॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत सारे साधन है जिससे कि जो है इसको भी इस दुविधा को ठीक कर सकते हैं। ये थोड़ा बहुत आंखों का जो लेंस होता है नेचुरल लेंस, उसमें कुछ खराबी आ रही है, उसमें हेजीनेस आ रहा हो, तो पूरा लेंस निकाल के आर्टिफिशियल लेंस लगा सकते हैं, या फिर हम जो है लेंस के बीच में एक स्पेस भी होता है।

0: है पुतली के पीछे जहां पर लेंस फिट कर सकते हैं। तो ये सर्जरी उन्हीं लोगों को हम कहते हैं जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही हो चश्मे के साथ।
1: दिक्कत तो नहीं आ रही, मैं थोड़ी
0: देखो ऐसा हैप्पी जी जो है भगवान ने जो चीज दी है उसे हैप्पी रहना चाहिए, छिड़कानी करेंगे तो ज्यादा नुकसान भी हो सकता है।
2: चलिए सर इसी इसी इसी बात के साथ वाइंड अप करते हैं और हैप्पी जी को आंसर उनका मिल गया होगा। सर तो आज का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ टिप्स,
0: मैं ये चाहूंगा कि गर्मी जो है हमारे देश में आती है और उसके साथ में जो है प्रिकॉशन तो लेना जरूरी है लेकिन साथ में गर्मियों में जो चीज फायदा करती है उसको भी लेना जरूरी है। जैसे हमारे पता है कि बड़े सारे पिगमेंटेड फ्रूट्स मैंगोज आ जाते हैं मार्केट में, उसको लेंगे तो उससे जो है आपको शरीर में फायदा होगा। धूप में जाएंगे तो जरूर जो है चश्मा या गॉगल्स लगा लीजिए, हैट है तो हैट या कैप पहन लीजिए। और जहां तक हमने देखा है जो लोग ओपन गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं, उनको अपने सरों को ढकना चाहिए, गॉगल्स लगाना चाहिए, हेलमेट हो तो और भी अच्छी बात है। और साथ में हमेशा एक पानी का पीने का बॉटल साथ में रखें जिससे कि आपकी प्यास तो बुझ ही सकती है लेकिन आंखों की सफाई भी हो सकती है। और कोई बीमारी आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, जरूर चेकअप कराइए जिससे कि बीमारी खराब ना हो जाए।
2: तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर जीवन सिंह तित्याल जी। और अब सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। डॉक्टर जीवन सिंह तित्याल हमारे गेस्ट थे, टॉपिक था हाउ टू प्रोटेक्ट योर आईज इन समर्स। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है, बल्कि ये युवाओं के सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। केंद्र सरकार ने आवर्जन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी भारत में 180 दिनों के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पहले यह पंजीकरण 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। गृह मंत्रालय ने आवर्जन और विदेशी नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। हालांकि निर्धारित अवधि के बाद विलंब होने से पंजीकरण की अनुमति केवल आपात परिस्थितियों में ही दी जाएगी। इसके अलावा पहली बार नियमों में ऑनलाइन अपील प्रणाली जोड़ी गई है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल मशातिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री मशातिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। म्यांमार के राष्ट्रपति ओम मिन औलाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ओम मिन औलाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेव और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दस्त

मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, मैं हूं बबीता रावत आपके साथ और प्रोग्राम शुरू हो चुका है अल्फाजन। और अल्फाजन में आज हम बात करने वाले हैं करियर पाथवे की। और आज हम किस करियर की बात करने वाले हैं? जी हाँ, आज का जो युग है वो डिजिटल युग है और लोग जानकारी को जल्दी से जल्दी खोजना चाहते हैं। AI टूल्स और सर्च इंजन बहुत ज्यादा इस पर निर्भरता बढ़ गई है। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे प्रोफेशंस भी हैं जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की नीड आज भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की, जहाँ फिजिकल और डिजिटल दोनों फॉर्मेट की जरूरत होती है। अल्फाजन में आज हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे? लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की। जी हाँ, लाइब्रेरी साइंस की बात करेंगे। और सुनते रहिए मेरे साथ, मैं हूँ बबीता रावत आपके साथ।

जिंदगी की राह तब आसान हो जाती है जब कोई गाइड मिल जाए, और ऐसे में बहुत जरूरी होती है आपकी करियर का सही चुनाव। जी हाँ, आप जब अपने करियर का सही चुनाव करते हैं तो आगे चल करके कोई मुश्किल नहीं होती, हर एक आसानी से आपके रास्ते खुलते जाते हैं और आप अपने करियर में ऊंचाइयों को छूते जाते हैं। जैसे कि अगर मैंने बताया है लाइब्रेरी साइंस के बारे में, तो इसमें सर्टिफिकेट से लेकर के पीएचडी तक आप लाइब्रेरी साइंस में कर सकते हैं, और इससे जुड़े बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनका चुनाव आप कर सकते हैं। और इसे करने के लिए क्या होनी चाहिए आपके अंदर एबिलिटी, और क्या चाहिए आपके अंदर जो आपको इस कोर्स की तरफ मोटिवेट कर सके करने के लिए। जिन्हें किताबों और इन्फॉर्मेशन का बहुत शौक है तो वो कर सकते हैं इस कोर्स को। जी हाँ, इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट से प्यार हो आपको तो फिर आप इस कोर्स को कर सकते हैं, और इससे जुड़े प्रोफेशन में केवल बुक्स को मैनेज करने तक ही आपको सीमित नहीं रहना पड़ेगा। डिजिटल युग है तो डेटा और इन्फॉर्मेशन की और साइंटिफिक मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसमें। तो आप अगर इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको किताबों से भी प्यार होना चाहिए और साथ ही साथ उन्हें मैनेज करने का भी आपको सलीका आना चाहिए। वैसे मैनेजमेंट कैसे होता है, लाइब्रेरियन क्या काम करते हैं, जी हाँ, आप अगर लाइब्रेरियन बन जाते हैं लाइब्रेरी साइंस करने के बाद तो आपको क्या क्या काम करने पड़ते हैं, ये सारी बातें आपको बताऊंगी। सुनिए पहले ये गाना।

झांक तो हमारी लगी रहती है जब हम 12th पास आउट कर लेते हैं, और 12th पास आउट करने के बाद हम बहुत कीन हो जाते हैं अपने करियर को सही चुनाव लेने के लिए, और कौन सा चुनाव हमारे लिए सही रहेगा, बस यही हमारी सोच रहती है। लेकिन ये सोच आजकल बहुत जल्दी डेवलप्ड होने लग जाती है, 7th 8th 9th में ही बच्चे सोचने लग जाते हैं कि आखिर हमें आगे करना क्या है। हालांकि अपनी एबिलिटी और काबिलियत को पहले जांचना चाहिए कि हम आगे क्या करने वाले हैं और क्या करना चाहते हैं, क्या हम उस पर सक्सीड हो पाएंगे, हमारी उतनी मेहनत हम रंग ला पाएगी। जी हाँ, आपकी मेहनत ही है जो आपको आगे बढ़ा सकती है, आपको एक सही चुनाव करवा सकती है एक अच्छे करियर की तरफ भी, और साथ ही साथ आने वाले समय में आप कितनी अच्छे से अपने करियर को परस्यू करते हो, कितने अच्छे से आपने कोर्सेज चूज करें, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं सिर्फ आपके एक छोटे से डिसीजन पर, और वो है आपके करियर का सही चुनाव। वैसे करियर की बात की जा रही है तो लाइब्रेरी साइंस में करियर बहुत अच्छा है इस वक्त। क्यों? पुस्तकों और जैसे बुक्स की बात की जाए और उनका मैनेजमेंट करने की बात की जाए तो इस वक्त लाइब्रेरियन के तौर पर आपको जरूरत पड़ती है हर जगह पर, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो। और यहाँ पर जाके काम आपको क्या करना पड़ता है भाई, आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है बुक्स का, और खास तौर पर जो हमारे जो पाठक हैं, जो हमारे पढ़ने वाले लोग हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको सही बुक्स खोजने में आपकी बहुत हेल्प चाहिए होती है एज अ लाइब्रेरियन। जी हाँ, और जब बुक्स की बात की जाती है तो बुक्स को कैसे मैनेज किया जाता है, उनका क्लासिफिकेशन करके, उनका कैटलॉगिंग करके, और उनके स्टॉक की जांच करके, ये सारे काम जो है एज अ लाइब्रेरियन करने पड़ते हैं। कई किताबें नई आई हैं, कौन सी किताबें कहाँ रखी हैं, कैसे रखी हैं, कितनी व्यवस्थित हैं, ये सारी जानकारी आपको मेंटेन करनी पड़ती है। और जब कैटलॉगिंग की बात आती है तो लाइब्रेरी के जो सभी डेटाबेस हैं उसको रजिस्टर्स में किताबों का डिजिटल या जो रिटन रिकॉर्ड होता है उसे रखना पड़ता है, और कौन सी किताब, कौन से लेखक की किताब, कौन से सब्जेक्ट की किताब कहाँ रखी हुई है, ये सारी जानकारी एक लाइब्रेरियन के पास होती है। अब

देखिए, कहने के लिए तो बहुत छोटी सी बात है कि इसका मैनेजमेंट करना, लेकिन आप सोचिए, एक लाइब्रेरी छोटी नहीं होती। जब आप एक लाइब्रेरी में जाते हैं, वहां पे हजारों किताबें रखी रहती हैं, अनगिनत विषयों से संबंधित। वो किताबों को कैसे एक लाइब्रेरियन मैनेज करता है, ये बहुत बड़ी बात है। और एक लाइब्रेरियन जब जरूरी है, देखिए डिजिटल युग में, मैंने कहा ना कि आजकल के डिजिटल युग में आप चुटकी बजाते ही सारी चीजों को खोज लेते हैं, लेकिन एज अ लाइब्रेरियन अगर आप जाते हो कहीं, तो वो एक क्या कहते हैं, एआई टूल्स या ऐसी चीजें आपको हेल्प तो करेगी, लेकिन मैन्युअली भी, यानी कि एक व्यक्तिगत तौर पर भी आपको काम करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि इस करियर में भी एक अच्छा चुनाव होगा आपके लिए, अगर आप चाहते हैं कि आप बुक्स के साथ अपनी जिंदगी को पूरा आबाद रखें। तो आप चूज कर सकते हैं लाइब्रेरी साइंस।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90

0: साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही

अल्फाजन प्रोग्राम सुन रहे हैं आप। मैं हूं बबीता रावत आपके साथ, और आज करियर पाथवे में बात हो रही है लाइब्रेरी साइंस की। जैसे कि कहा जा रहा है कि लाइब्रेरी साइंस टॉप करियर में से एक होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे करियर्स हैं। डिजिटल लाइब्रेरियन बन सकते हैं आप, और डिजिटल लाइब्रेरियन करते क्या हैं, क्यूरेट करते हैं। डिजिटलाइज्ड आजकल का टाइम है, तो ऑनलाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, ई जर्नल्स को और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखते हैं डिजिटल फॉर्म में। और एकेडमिक और स्कूल लाइब्रेरियन, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो स्कूल या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज होती हैं, तो वहाँ पर मैनेज कैसे किया जाए रिसोर्सेज को, बुक्स को, और स्टूडेंट्स को रिसर्च में जिससे मदद हो सके, वो करते हैं हमारे एकेडमिक लाइब्रेरियन। और एक होते हैं नॉलेज मैनेजर, ऑर्गेनाइज करते हैं इंटरनल इंफॉर्मेशन सिस्टम और डेटाबेस और रिसर्च, और कॉरपोरेट कंपनीज और टेक फर्म्स में ये काम करते हैं। उसके अलावा रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, जो कि स्किल्स उनके अंदर होती हैं इस तरीके के, जो एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए। तो ये सारे जो हैं करियर्स होते हैं अगर आप लाइब्रेरी साइंस से कोई भी कोर्स करते हैं। उसके अलावा क्वालिफिकेशन और डिग्रीज, जैसे मैंने बताया कि इसमें सर्टिफिकेशन कोर्स से लेकर के और पीएचडी कोर्सेज तक होते हैं। तो आपको बताते चलें, सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं, बैचलरेट कोर्सेज भी होते हैं, तो आपको बताएंगे इसके बारे में। पहले आप सुनिए ये गीत।

लाइब्रेरी साइंस के बारे में बातें कर रहे थे हम, और लाइब्रेरी साइंस में जैसे मैंने बताया बहुत सारे कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं और पीएचडी तक इसमें होती है। तो सर्टिफिकेट कोर्स 6 महीने से 1 साल तक होता है, 10वीं के बाद या 12वीं के बाद भी आप इसे कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं और इसमें 1 से लगभग वर्ष लगता है, 1 साल का वर्ष समय लगता है, और 12वीं के बाद जो स्टूडेंट्स ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा बैचलर डिग्री होती है, इसमें 1 साल से ज़्यादा समय लगता है, और किसी भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन करने के बाद इस कोर्स को कर सकते हैं। मास्टर डिग्री की बात कहें तो इसमें लगभग 2 साल के लगभग समय लग सकता है, और इसके बाद आप हायर स्टडीज़ के लिए या किसी हायर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और पीएचडी की बात कहें तो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पर प्रोफेसर बनने या रिसर्चर बनने के लिए भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज हैं, आप इसे कर सकते हैं, और कहाँ से कर सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। सुनते रहिए हमारे साथ, आकाशवाणी रेनबो प्रोग्राम है अल्फाजन, मैं हूं बबीता रावत आपके साथ।

जी हाँ, मैं और आप मिलकर बन रहे हैं यहाँ पर करियर पाथवे का एक और पाथवे। और ये पाथवे कहाँ के लिए है, ये पाथवे बना रहे हैं हम लाइब्रेरी साइंस में। और लाइब्रेरी साइंस की बातें तो मैंने बता दी आपको कि ये कोर्स होते हैं और ऐसे ऐसे एक्सपेक्टेशंस आप कर सकते हैं ऐसे। लेकिन कहाँ से कर सकते हैं आप इन्हें, आप कर सकते हैं ये सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटीज़ में भी होते हैं और CUET के थ्रू भी आप इन कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, CUET के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इन कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो। अभी जो हमारे 12th पास आउट हैं या फिर हम ये कह सकते हैं 10th पास आउट हैं, वो अपने करियर को बनाना चाहते हैं, तो आप इसका भी एक कोर्स कर सकते हैं अपने आने वाले लाइफ को एक सिक्योर भविष्य देने के लिए। और बिल्कुल और भी चीज़ें हैं बताने के लिए आपको। सुनते रहिए मेरे साथ अल्फा जैन।

0: कोयल से तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर। हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
4: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
5: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
4: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
6: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
4: ठीक है,
6: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा है इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
5: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
4: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
4: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
5: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
4: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
5: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
4: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
5: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
4: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
5: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
3: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, मैं हूं बबीता रावत आपके साथ और प्रोग्राम है अल्फा जैन और बात हो रही है करियर पाथवे और लाइब्रेरी साइंस के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। कोर्सेज के बारे में बता दिया, कहां से करना है ये बता दिया और जब इस कोर्स को कर लेते हैं आप तो कहां कहां आपकी जॉब एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कहां कहां आप जॉब कर सकते हैं ये बताते हैं आपको। सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी में आप काम कर सकते हैं, उसके अलावा गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में काम कर सकते हैं। स्कूल और कॉलेज के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा लॉ फर्म और म्यूजिक और मीडिया हाउस में भी आप काम कर सकते हैं। तो ये वो जगह हैं जहां पर आप काम कर सकते हैं। लाइब्रेरी साइंस अगर आपने की हुई है और बहुत सारे अनुभव के साथ

बाद आप आने वाले समय में एक अच्छी हैंडसम सैलरी इंक्रीज करवा सकते हैं अपनी। उसके बाद जब स्किल्स की बात की है हमने, तो स्किल्स में जैसे मैंने बताया आपको कि आपको बुक्स को पढ़ने और उनको मैनेज करने का आपको आना चाहिए। जी हाँ, बुक्स को पढ़ने का अगर आपका रुचि है आपकी, और साथ ही साथ उनको कैसे मैनेज करना है, उनको ऑर्गेनाइज करना है, ये ज़रूरी स्किल होती है इसमें। इसके अलावा क्योंकि डिजिटल युग है, तो कंप्यूटर और डिजिटल डेटाबेस की आपको अच्छी समझ होनी चाहिए। डेटा बेसिस को कैसे संभालना है, किस तरह से इसको मैनेज करना है, ये भी होना चाहिए। साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल्स तो हर जगह है, और पेशेंस के साथ आप इस प्रोफेशन को बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं।

क्षेत्र में करियर बनाने के लिए इग्नू और विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों में से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और जब सरकारी नौकरियों के लिए समय समय पर कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC के थ्रू और UPSC, स्टेट PCS और विश्वविद्यालयों द्वारा निकाली गई जाने वाली जो वैकेंसीज होती हैं उस पर भी आवेदन कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी एक अच्छा करियर आपके लिए लाइब्रेरी साइंस में है।

कहते हैं कि मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान है और जब वो केंद्रित होती है तो चमक उठती है। तो अपने आप को केंद्रित कीजिए और फोकस कीजिए कौन सा करियर आपको चुनना है। अच्छा चुनाव, अच्छे करियर के चुनाव के साथ ही आप एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। मैं लेती हूं अभी आपसे विदा, फिर किसी दिन किसी रोज इसी मोड़ पर मिलूंगी आपसे आकाशवाणी रेनबो पर। अगला प्रोग्राम सिटी लाइट्स लेकर आ रही हैं गजब की गीतांजलि, जुड़े रहिएगा उनके साथ। फिर मिलेंगे आपसे किसी दिन किसी रोज इसी मोड़ पर, तब तक ले बाय एंड टेक केयर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। नई दिल्ली में आज जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सतत विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है, बल्कि ये युवाओं को सपने देखने का अधिकार देती है। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपकोसा माशातिले ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, कौशल विकास और जनजन संबंधों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया। केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिनों के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ये पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण की समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा पहली बार नियमों में ऑनलाइन अपील प्रणाली जोड़ी गई है। अब किसी आदेश से प्रभावित व्यक्ति आव्रजन ब्यूरो के आयुक्त के समक्ष ऑनलाइन अपील दायर कर सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शिल नागू, न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, न्यायमूर्ति अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि उन सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए जिन्होंने अतिक्रमण किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। यह मुलाकात

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পাছতে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই লাভলীন নিগম। भारत ने कहा है कि नेपाल और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह बात नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत नेपाल सीमा को लेकर टिप्पणी और उसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के बारे में पूछे गए सवाल के उत्तर में कही। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% सीमांकन हो चुका है।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अवांछित संदर्भों को भी खारिज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ये वार्ता ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, दवा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर केंद्रित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। दोनों नेताओं ने भारत दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सार्थक वार्ता की। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। ये मुलाकात भाजपा को जाने कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। नई दिल्ली में आज जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सतत विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें। केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिन के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ये पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेव और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने पिछले महीने 23 अरब 20 करोड़ लेनदेन का रिकॉर्ड बनाया है। इस उपलब्धि पर वित्तीय सेवा विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से नागरिकों को डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश कादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: জুৰি বৰ্মনে পৰিৱেশন কৰা লোকগীত শুনিলে। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পাছতে সংস্কৃতত বাতৰি শুনিবলৈ পাব। সংস্কৃতৰ বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको नरेन्द्रदत्त सेमवालः। आदौ मुख्यवार्ताः। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मूवर्यया प्रोक्तं यत् शिक्षा सशक्तीकरणस्य महत्त्वपूर्णं साधनं विद्यते, अपि च वास्तविकविकासः तदैव सम्यग्रूपेण प्राप्स्यते यदा समाजस्य सर्वे एव पक्षाः सामाजिकेन आर्थिकेन शैक्षिकेन च रूपेण विकसिताः भविष्यन्ति। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इत्यनेन विगतमासे 23.20 अर्बुदरूप्यकाणां आदान प्रदान विषयकं शिखरं समावाप्तम्। केन्द्रसर्वकारेण आव्रजन नियमे निर्गतायाः अधिसूचनायाः अनुसारम् अधुना 80+100 दिनानि यावत् आगम्यमानाः वैदेशिकाः यदि स्वकीयं प्रवाससमयं वर्धयितुमिच्छन्ति तर्हि तेभ्यः आव्रजनावधे समाप्तिपूर्वम् एव पञ्जीकरणम् अनिवार्यमस्ति। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः न्यायमूर्तिः सूर्यकान्तः इत्यसौ अद्य सर्वोच्चन्यायालयस्य 5 न्यायाधीशेभ्यः पदस्य शपथवचनं प्रायच्छत्। सर्वोच्चन्यायालये न्यायाधीशानां संख्या समेध्य 38 सञ्जाता। अपि च विज्ञान प्रौद्योगिकी मन्त्री डॉ जितेन्द्र सिंह जर्मनी देशस्य थुरिंगिया इत्यस्य मन्त्री राष्ट्रपति च मारियो वोक्ट इत्यसौ च अद्य नवदिल्ल्यां क्वांटम संचारस्य फोटोनिक्स इत्यस्य उद्योग नेतृत्वभूतस्य डीपटेक सहयोगस्य च विषये चर्चितवन्तौ। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मूवर्यया प्रोक्तं यत् शिक्षा सशक्तीकरणस्य महत्त्वपूर्णं साधनं विद्यते। शिक्षा एव जनान् आत्मनिर्भरं जागरूकः सक्षमश्च कारयति। अद्य नवदिल्ल्याम् असौ जनजातीय छात्रवृत्ति लाभार्थिनः सम्बोधयति स्म। अस्मिन् अवसरे सा प्रोक्तवती यत् वास्तविक विकासः तदेव सम्यक् रूपेण प्राप्स्यते यदा समाजस्य सर्वे एव पक्षाः सामाजिकेन आर्थिकेन शैक्षिकेन च रूपेण विकसिताः भविष्यन्ति।
2: युवा हमारी राष्ट्र की शक्ति आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: सा रेखांकितवती यत् सर्वकारस्य छात्रवृत्ति योजनया जनजातिवर्गेभ्य उच्चशिक्षायाः अवसराणां च आदानेन प्रदानेन तेषां जीवनं परिवर्तितम्। द्रौपदी मुर्मूवर्या अकथयत् यत् भारते प्रतिभासम्पन्नानां नैयून्यं न अस्ति, अपि तु तेषाम् अभिज्ञानं पोषणं तेभ्य उचित मार्गदर्शन प्रदानं च आवश्यकमस्ति।
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इत्यनेन विगतमासे 23.20 अर्बुदरूप्यकाणां आदान प्रदान विषयकं शिखरं समावाप्तम्। वित्तीय सेवा विभागः सार्वजनिक संदेश माध्यमे लिखिते संदेशे डिजिटल इति रूपेण धनादान प्रदानं स्वीकर्तुं नागरिकान् प्रति आभारं व्यक्तीकृतवान्। अवधेयं यत् यूपीआई इत्येतत् प्रकल्पं विश्वस्य सर्वोच्चत्वेन रियल टाइम पेमेंट इति प्रकल्परूपेण समुद्भूतमस्ति, यत् देशस्य डिजिटल अर्थव्यवस्थायाः आधारः वर्तते। केन्द्रसर्वकारेण आव्रजन नियमे विदेश नियमेषु च संशोधनम् अधिसूचितमस्ति। नियमानुसारं भारते 80+100 दिनानि यावत् आगम्यमानाः वैदेशिकाः यदि स्वकीयं प्रवाससमयं वर्धयितुमिच्छन्ति तर्हि तेभ्यः आव्रजनावधे समाप्तिपूर्वमेव पञ्जीकरणम् अनिवार्यमस्ति। इतः पूर्वम् अशीत्यधिकैकशतं दिनानाम् अवधे समाप्त्यानन्तरं चतुर्दश दिनाभ्यन्तरं पञ्जीकरणम् आवश्यकमासीत्। गृहमन्त्रालयेन आव्रजन विदेशी नियमः इत्येषा अधिसूचना निर्गतास्ति, यस्याम् आव्रजन विदेशी नियमः इत्यस्यान्तर्गतं पञ्जीकरणसीमायां समयसीमा अध्यर्थनातन्त्रे च महत्वपूर्णानि परिवर्तनानि कृतानि सन्ति। यद्यपि निर्धारितावधेः अनन्तरं पञ्जीकरणं केवलं आपत्काल परिस्थितिषु एव स्वीकार्यं भविष्यति, प्रथमवारं नियमेषु अन्तर्जालमाध्यमेन अध्यर्थनाप्रणालिः योजितास्ति। केनापि आदेशेन प्रभावितः जनः अधुना आव्रजन विभागायुक्तम् अन्तर्जालमाध्यमेन प्रार्थयितुं शक्नोति। अध्यर्थना आदेश प्राप्तिसमयात् त्रिंशद्दिनानाम् अभ्यन्तरम् एव कुर्यात्। आयुक्तः सम्बन्धित पक्षं संश्रुत्य निर्णयं दास्यति, अपि च विषयस्य समाधानं षष्टिदिनानाम् अभ्यन्तरम् एव कुर्यात्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः न्यायमूर्तिः सूर्यकान्तः इत्यसौ अद्य सर्वोच्चन्यायालयस्य पञ्च न्यायाधीशेभ्यः पदस्य शपथवचनं प्रायच्छत्। न्यायमूर्तिः शीलनागू, श्रीचन्द्रशेखरः, सञ्जीवसचदेवा, अरुणपल्ली, वरिष्ठाधिवक्त्री वी मोहना च सर्वोच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशत्वेन शपथवचनं स्वीकृतवन्तः। अवधेयं यत् केन्द्रेण सर्वोच्चन्यायालये कॉलेजियम इत्यस्य अनुशंसां पालयता यः एव एतेषां नियुक्तिविषयिकी स्वीकृति प्रदत्ता। एताः नियुक्तयः राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया सर्वोच्चन्यायालय संशोधन अध्यादेशः इत्यस्य प्रतिष्ठापनानन्तरं कृताः सन्ति। अधुना भारतस्य मुख्यन्यायाधीशेन सह सर्वोच्चन्यायालये न्यायाधीशां स्वीकृता संख्या चतुस्त्रिंशत्तः समेध्य अष्टत्रिंशत् यावत् कृतास्ति। विज्ञान प्रौद्योगिकी मन्त्री डॉ जितेन्द्र सिंहः जर्मनी देशस्य थुरिंगिया इत्यस्य मन्त्री राष्ट्रपतिः मेरियो वोग्ट इत्यसौ च अद्य नवदिल्ल्यां क्वांटम संचारस्य फोटोनिक्स इत्यस्य उद्योग नेतृत्वभूतस्य डीपटेक सहयोगस्य च विषये चर्चितवन्तौ। अस्मिन् अवसरे भाषमाणः डॉ सिंहवर्यः अकथयत् यत् अद्य देशः विश्वस्य तृतीयस्य सर्वोच्च स्टार्टअप इकोसिस्टम इत्यस्य अध्यक्षतां करोति, अपि च जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, जल प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी चेत्यादिषु क्षेत्रेषु अन्ताराष्ट्रिय सहयोगस्य महत्वपूर्णावसरान् प्रयच्छति। डॉ सिंह अकथयत् यत् भारत जर्मनी देशो विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार जनसंबंध चेत्यादिषु विषयेषु एकस्य सुदृढ सहयोगस्य आदान प्रदाने कुरुतः। राष्ट्रिय पंचायत पुरस्कार समारोहः श्वः नवदिल्ल्यां आयोजयिष्यते। एते पुरस्काराः देशस्य द्वाचत्वारिंशत् संख्याकेभ्यः उत्कृष्ट पंचायतेभ्यः प्रदास्यन्ते। समारोहावधौ दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कारः इत्यस्यां श्रेण्यां चतुस्त्रिंशत् ग्राम पंचायतेभ्यः नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सकल विकास पुरस्कार श्रेण्यां च अष्ट पंचायतेभ्यः पुरस्काराः प्रदास्यन्ते। प्राप्त पुरस्काराः पंचायत प्रमुखाः स्वकीयाः सर्वोत्तम कार्यप्रणालीः उपलब्धीन् चाधिकृत्य प्रस्तुतिं दास्यन्ति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागः इत्यनेन राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेशस्य तटवर्ति क्षेत्रेषु दिनसमये गर्जनेन विद्युत तरंग चमत्कृतेन च सह झंझावातस्य संचेतना प्रवर्तितास्ति। कर्णाटकस्य आंतरिक क्षेत्राणि केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल चेत्यादिषु क्षेत्रेषु श्वः यावत् तीव्रवृष्टिः भविष्यति। आगामिषु दिवसत्रयेषु हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभृतिषु क्षेत्रेषु तीव्र झंझावातेन सह गर्जनस्य विद्युत तरंग चमत्कृतस्य च संभावना वर्तते। तमिलनाडु केरल राज्ययोः अगस्त्य मलाई पारिस्थितिक परिदृश्यम् इत्यस्य संरक्षित क्षेत्रेषु अतिक्रमणम् अधिकृत्य गंभीर संज्ञानम् अंगीकुर्वन् सर्वोच्च न्यायालयः एकां समयबद्ध अतिक्रमण मुक्ति योजनां निर्मातुं तां च प्राथमिकाधार रूपेण प्रतिष्ठापयितुं च निर्देशं प्रायच्छत्। सर्वोच्च न्यायालयः अतिक्रमणं कुर्वन्तः सर्वान् 18,100 सेवानिवृत्तान् सर्वकारीय कर्मचारिणः विरुध्य अनुशासनात्मकं वैधानिकं च कार्याचरणं प्रवर्तयितुम् आदेशं प्रायच्छत् इति वार्ताः।
0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ বাতৰিৰ পাছত পুনৰ উভতি আহিছো যুৱবাণীৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে মিডিয়াম ৱেভৰ 299.9 মিটাৰত 1035 কিলোহাৰ্জ আৰু ডি আৰ এম ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ 1026 কিলোহাৰ্জত। প্ৰিয় শ্ৰোতা, এতিয়া আগবঢ়াইছো কস্তুৰী বৰাই কণ্ঠদান কৰা আধুনিক গীত।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत ने कहा है कि नेपाल और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत नेपाल सीमा को लेकर टिप्पणी और उसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के बारे में पूछे गए सवाल के उत्तर में कही। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% सीमांकन हो चुका है।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अवांछित संदर्भों को भी खारिज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। ये वार्ता ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, दवा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर केंद्रित रहेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातीले से मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति के साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी था। दोनों नेताओं ने भारत दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सार्थक वार्ता की। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, कौशल विकास और जन जन संबंधों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया। केंद्र सरकार ने आवर्जन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिनों के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना होगा। ये पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि उन सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए जिन्होंने अतिक्रमण किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। बोर्ड ने बताया कि पोर्टल की सेवा में व्यवधान डालने के लिए 2 मिनट के अंदर लगभग 15 लाख आवेदन भेजे गए। बोर्ड ने कहा कि सिस्टम पर उपलब्ध फाइलों तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के 1 लाख से अधिक प्रयास हुए। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में PV सिंधु और हरिहरन अमसा करुणन तथा MR अर्जुन की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल किसान कल्याण और किसान केंद्रित नीतियों के माध्यम से किसानों का सशक्तिकरण। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज नाउ वी ब्रिंग अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट एम्पावरिंग फार्मर्स थ्रू वेलफेयर and farmer-centric policies. Participants are Shekhar Iyer, political analyst, and S.P. Singh, senior journalist. The moderator is Sonu Sood.
2: In the last 12 years of NDA government, Prime Minister Narendra Modi has continually stressed on farmers' welfare as one of the topmost priorities of the government. Agricultural production and

0: Agricultural exports have gone up steadily, and we have become a leading producer of food grains, millets, milk, coconut, spices, fruits, vegetables in the world. While ensuring food security for 140 crore Indians, the strong agricultural growth has made us an integral part of the global food value chain. In the last 12 years, the government has brought in path-breaking, targeted reforms for every stage of the agricultural cycle, optimizing productivity and ensuring transparent delivery of the benefits of government schemes through use of latest technology and digitization. To discuss the holistic government initiatives to maximize farmer welfare over the last 12 years and how it has given stability and momentum to our agriculture sector, we are joined today by two special guests, Mr. S.P. Singh and Mr. Shekhar Iyer. Mr. Singh, Mr. Iyer, a warm welcome to both of you at this special Akashvani series on completion of 12 years of NDA government.
1: Namaskar, thank you.
0: So, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह का हमने एक तेजी देखी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिस तरह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, न सिर्फ फूड ग्रेन्स में, हॉर्टिकल्चर में, बाकी जो कृषि के एलाइड सेक्टर्स हैं, किस तरह से आप आंकते हैं सरकार का जो ये 12 वर्षों में अप्रोच रहा है कृषि क्षेत्र की तरफ, उसमें कौन सा ऐसा प्रमुख केंद्र बिंदु है जिससे आपको लगता है कि ये संभव हो पाया है?
2: देखिए, इस सरकार की जो अगर सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर अगर हम देखें तो खेती किसानी के मामले में और कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने की उन्नत दिशा में ले जाने में या किसानों की दशा और दिशा को सुधारने में अगर किसी ने अहम रोल अदा किया है तो इस सरकार के इस 12 साल को एक माइलस्टोन के तौर पर देखा जा सकता है, एक अच्छा फेज कहा जा सकता है। सबसे पहला काम इस सरकार का अगर देखें तो सुधार के तौर पर कृषि सुधार की दिशा में कृषि मंत्रालय का नाम पहले बदला गया। इसका नाम कृषि मंत्रालय था, इसको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किया गया। इसका पर्पज सिर्फ यह था कि किसानों कृषि के साथ जो किसान से जुड़े हुए एलाइड सेक्टर है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, खेती और किसानी। दूसरा, किसान कृषि का की परिभाषा को सरकार ने बदला, वो उसके तरीके पहले था खेती और बाड़ी, लेकिन खेती के साथ देखते देखते बाड़ी कहीं गायब हो गई, विलुप्त सी हो गई। तो इस सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उन्होंने बाड़ी को आगे बढ़ाया, यानी खेती की परिभाषा को, कृषि की परिभाषा को बदला और उसके दायरे को बढ़ाकर उसमें उन सेक्टर्स को भी डाला जो चूक हो रही थी और या विलुप्त हो रहे थे, जैसे बागवानी का, हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, प्लस इसके अलावा डेयरी, पशुपालन और बी कीपिंग, मतलब खेती किसानी से जुड़े हुए जो उद्यम थे, सह उद्यम जिन्हें था, जो किसानों की जो आमदनी बढ़ाने की बात होती है, प्रधानमंत्री बार बार कहा करते हैं कि दोगुना करने की बात कही थी, मैं बार बार कहता हूं कि खेती के साथ अगर बाड़ी को जोड़ दिया जाए तो दोगुना नहीं, कई गुना की वृद्धि आमदनी बढ़ाई जा सकती है। और सरकार का पूरा प्रयास था कि हम कैसे खेती के साथ बाड़ी को आगे बढ़ाएं, और बाड़ी के आगे बढ़ाने का एक नतीजा है कि आज हम दुनिया में खेती के साथ साथ हार्टिकल्चर में, फिशरी में, आज हम हार्टिकल्चर में दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। कई ऐसे फ्रूट्स हैं, कई ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिसमें हम दुनिया में नंबर एक उत्पादन करने वाले कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह से हम चावल, चीनी, गेहूं और तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको हम दुनिया में सबसे बड़े एक्सपोर्टर हो चुके हैं। हम फिशरी के मामले में दुनिया के, चीन के बाद दूसरे नंबर के एक्सपोर्टर, जबकि हमारे यहाँ अभी जो एक्सप्लोरेशन होना चाहिए फिशरी का वो बहुत कम है। यानी इस सरकार का जो पूरा फोकस था खेती किसानी में लगे हुए किसानों के साथ, खेती तो वो करता था जिसके पास खेत होता था, लेकिन वो खेती में जो लोग लगे हुए थे जिनके पास जमीन नहीं थी, भूमिहीन किसान, वंचित वर्ग, गरीब वर्ग, जिसका कोई पूछने वाला नहीं था कि उन्हें क्या मजदूरी मिल रही है, वो कैसे उनका खर्च चल रहा है, कैसे वो जीवन यापन कर रहे हैं, इस सरकार ने सबसे बड़ा फोकस उनके साथ किया जो बाड़ी को जोड़ा, जिसमें जमीन की जरूरत नहीं होती है। दो पशु रख लीजिए, चार पशु रख लेता है गांव का भूमिहीन किसान, उससे उसका काम चल जाता है, उससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और वो अपने किसान के खेत पर खेती करता है, उससे पैसे मिल जाते हैं और अपने पशुपालन है, भेड़ पालन है, मतलब ढेर सारी से पशुपालन से भी पैसे मिलते हैं। तो ऐसे सेक्टर खोल दे, बी कीपिंग है जिसमें कुछ नहीं लगता है, ऐसे ही फिशरी है, फिशरी में गांव के जितने भी तालाब थे, सोचिए मनरेगा के तहत इस सरकार ने कई लाख जीर्णोद्धार कराया तालाबों का, पुराने तालाबों का और नए तालाब को तैयार कर

0: करवाया, उसमें जब पानी भरा तो वो उन लोगों को दिया गया जिनके पास, जो भूमिहीन किसान थे, जिनके पास खेती नहीं थी, ऐसे, और जो लोग जिनको पानी से बहुत पुराना नाता था, ऐसे मछुआरों को जो ये काम दिया गया तो वहां पे मछली का उत्पादन होने लगा, ऐसे ही डेयरी का उत्पादन होने लगा। जब डेयरी का उत्पादन हुआ तो दूध कहाँ बेचेगा वो, एक बड़ी समस्या का पैदा होने से पहले ही सरकार ने सोच लिया था कि उनके लिए क्या करना है, तो उसने कोऑपरेटिव सेक्टर को आगे बढ़ाया और एक नया कोऑपरेटिव मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय खड़ा कर दिया। और उसकी चेन इतनी है कि गांव का हमें लगता नहीं कि कोई किसान बचा होगा या कोई गांव बचा होगा जिसमें पैक्स ना हो, जिसमें सहकारिता का आंदोलन न पहुंच गया हो और किसान उससे जुड़े ना हो। जी
1: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, मिस्टर सिंह हैज यू नो आउटलाइंड सो ब्यूटीफुली दैट व्हाट हैज बीन द बेसिक चेंज इन द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर सेक्टर। वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू द स्टेबिलिटी एंड द मोमेंटम दैट वी हैव सीन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इवन इन द डिफिकल्ट इयर्स ऑफ कोविड द एग्रीकल्चर सेक्टर केप्ट ग्रोइंग। हाउ डू यू सी द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू हैव बीन द यू नो मेजर एरियाज वेयर द गवर्नमेंट यू feel has you know hit the bullseye and which is why we are seeing this buoyancy in our agriculture sector?
2: For over a decade, you know, government of India under Prime Minister Modi ji's direction, you know, has placed agriculture at the heart of a vision of a plan, right, of Viksit Bharat. Yes. So when we are talking of Viksit Bharat, agriculture is at the core of it, and that is why over the last 10 years, you have seen several schemes that have been launched, several projects. They are so interconnected, which ensures there is latest research also plays a part, technology plays a part, and farmers are empowered to ensure productivity and also their livelihoods become sustainable.
1: Yes.
2: And all the time, the goal has been to double the income of farmers. So whatever ideas you have seen in the last 10 years has been directed at that. And as recently, just a few days ago, we saw the Prime Minister giving a clarion call that India is, if India's economy is going to reach the third largest economy, that India should be annadata for the entire world. Yes. See, that is a kind of concept, that is a kind of imaginative vision with which this government is approaching agriculture. Yes. Our farmers have been handheld, उनको मदद किया गया है, उनको हाथ पकड़ के खड़े होने के लिए जो भी साधन की जरूरत है वो सारी चीजें भी देते हुए भविष्य को भारत कृषि क्षेत्र में हाउ इट विल गो अहेड एंड हाउ इट विल बिकम द प्रोवाइडर फॉर द एंटायर वर्ल्ड, दैट इज बिहाइंड इट। सो इन दिस ड्रीम, यू नो, टू सी दैट द रूरल इंडिया ट्रांसफॉर्म्स, यू हैव सीन दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन इनटू अकाउंट ऑल द न्यू प्रॉब्लम्स दैट आर कमिंग, like climate change, then ensuring market access, challenges in market access, setting up of warehouses, setting up of cold storages, and also running green trains. You know, produce from one region is immediately transported to the large market. So today, if you are seeing Karnataka tomatoes being available in Delhi, Nasik onions are moving to Bombay and to South, that this whole thing, that entire India being one market, so that our farmers get a better price, has been, is just one indication how things are moving. Apart from that, you have also seen there are several other things which this government has done, which is, you know, looking at direct income support. Right. For instance, the PM Kisan, then there is a Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, you know, to provide a safety net for the crop loss against natural disasters. Because somewhere other you have a cyclone or a flood or, you know, something or the other happens for which our farmer is not prepared. Then credit access, the Kisan credit card, you know, that is also a big thing to provide short-term and long-term credit. Apart from that, you have also seen in this budget, initiative has been where, you know, like a PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, so that, you know, it focuses on low productivity districts. Focus on that. Then also, the overall thing is, you know, mission for Atmanirbharta in pulses, which is the new area, the thrust area, to see that our dependence on import of pulses, that is dal vagara vagara, we don't have to depend. And lastly, I must add, the Prime Minister has also brought focus to natural farming. So that the future is natural farming. We can have chemical-free agriculture. And towards that goal, you are seeing a lot of steps being taken of late.
1: Yes. Mr. Singh, जैसा कि मिस्टर अय्यर ने कहा कि बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं, अलग अलग जो स्टेज होती है एक एग्रीकल्चरल साइकिल की, अगर हम पहली जो स्टेज है इनपुट्स की, उसकी

0: बात करें तो उसमें क्वालिटी इनपुट्स अफोर्डेबल रेट्स पर मुहैया कराना, इस पर जो प्रमुख कार्य किया गया है उसको अगर आप सटीक रूप में हमें बता सकें।
1: खेती में इनपुट की लागत को घटाना और उसके उपज का उचित मूल्य दिलाना सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि किसानों को कैसे फायदा मिल सकता है। तभी फायदा होगा जब इनपुट कास्ट घटेगी और उनके उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा, यानी उचित मूल्य या लाभकारी मूल्य मिलेगा। उसके लिए सबसे पहले दो हिस्सों में बांट के देखा जाए तो खेती के लिए जरूरी होती है मिट्टी, खाद, पानी, बीज और किसान, लेबर, ये और पैसा। तो इन सब चीजों का कैसे किया, मिट्टी की सबसे पहले सेहत जांची गई, सॉयल हेल्थ कार्ड के नाम पर देश के सारे किसानों के खेतों को जांचा गया, परखा गया कि उनके खेत में किस तत्व की कमी है। जो कम है वही चीज डाली जाए, क्योंकि अंधाधुंध फर्टिलाइजर का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं था। तो सबसे पहले मिट्टी की जांच कराई गई,
0: 25 करोड़ से ज्यादा सॉयल हेल्थ
1: लगभग सभी किसानों के करा दिया गया। उसका मकसद यह था कि हर 3 साल पर यह कराया जाता है ताकि इससे ये पता चल सके कि मिट्टी में कौन सी चीज कम है, कौन सी ज्यादा है, उसी हिसाब की खाद डाली जाए। दूसरा काम किया खाद का, फर्टिलाइजर का। हमारे यहाँ याद होगा आपको कि 2014 से पहले फर्टिलाइजर को लेकर हर सीजन में हाय तौबा मचती थी, लेकिन 14 के बाद ये स्थिति नहीं रही। तो आखिर कहां से खाद की उपलब्धता कहां से आ गई, ये था कि जो हमारे यहाँ लीकेज हुआ करता था उसे सरकार ने रोका। नीम कोटेड यूरिया, यूरिया का उपयोग किसी और इंडस्ट्रियल उपयोग में कर लिया जाता था रॉ मटेरियल की तरह से, इसको रोकने के लिए उसमें नीम का तेल या नीम की खाद को मिला दिया गया, जिससे वो नीम लेपित यूरिया जब दी गई किसानों को तो वो किसी और उपयोग की नहीं, सिर्फ खेतों के ही उपयोग की थी। उससे 10 से 20 हजार करोड़ रुपया सरकार का सब्सिडी का सीधे सीधे बचा। तीसरी जरूरत थी इनपुट था पानी, सिंचाई। सिंचाई के हिसाब से देखें तो पानी की हमारे यहाँ मैक्सिमम पानी जो नीचे जमीन से निकाला जाता है, पंप होता है या नहरों से जाता है, वो सिंचाई के काम में आता है। लेकिन पानी की जितनी जरूरत है और जितनी खेती है उसमें बहुत डिफरेंस था, बहुत मुश्किल थी। और हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी थी सिंचाई की वो ठीक नहीं थी, वैज्ञानिक नहीं थी। तो इसके लिए सबसे पहले सूक्ष्म करके जो माइक्रो इरिगेशन को सरकार ने हैवी सब्सिडी के आधार पर हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि इससे 30 से 70% तक पानी बचता है। जो फ्लडिंग के तौर पर हमारे यहाँ सिंचाई होती थी, फ्लडिंग सिस्टम से हट के वैज्ञानिकों ने बताया कि नहीं, ये सिस्टम नहीं, कम से कम पानी, यानी बूंद से बूंद पानी या थोड़ा थोड़ा पानी भी चाहिए, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री हर भाषण में शुरुआती दौर में इस पर जोर दिया करते थे कि गन्ने की खेती भी इससे हो सकती है। चौथा था बीज, बेहतर सीड। अगर आप, बड़ी सिंपल सी कहावत है कि बोए बीज बबूल का, आम कहां से होए, तो जब आप बेहतर सीड अगर उपयोग नहीं, बीज नहीं उपयोग करते हैं, तो उससे बेहतर उत्पादकता की उम्मीद, यील्ड अच्छी नहीं होगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बेहतर बीजों का उपयोग का, हमारे साइंटिस्ट, इतना बड़ा ICR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का इतना बड़ा सिस्टम हमारे पास है, हमारे हर साल सैकड़ों बीज हर तरह के तैयार हो जाते हैं, आविष्कृत होते हैं, लेकिन वो खेतों के, किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच पाते थे। उसको कैसे पहुंचाया जाए, इस सिस्टम को ठीक किया। और बीज पहुंचाने के लिए, और हमारे यहाँ बीज की जरूरत थी, कि अभी अय्यर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जलवायु का जो विपरीत स्थितियां पैदा हो रही हैं और रोग, तो डिजीज से बचने के लिए, क्योंकि जब जलवायु परिवर्तन होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे यहाँ बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ढेर सारे रोग फैलते हैं। ऐसे रोगों से प्रतिरोधी क्षमता वाले बीज तैयार किए गए। और जलवायु जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए या बहुत ज्यादा ठंडी पड़ जाए या बहुत तेजी से बहुत ज्यादा पानी आ जाए, इन तीनों स्थितियों से बचने वाले ऐसे सीड तैयार किए गए जो उन फसलों पर इनका असर कम से कम हो या न्यूनतम हो। ये सबसे बड़ा काम किया इन्होंने इनपुट को घटाने का। उससे आगे बढ़ के इन्होंने किया बाजार को, कैसे बाजार इनको कैसे उपलब्ध कराया जाए, बेहतर बाजार। अब हर किसान तक बाजार को पहुंचाना आसान नहीं था, लेकिन नहीं, इस डिजिटल दुनिया में ये बहुत आसान बना दिया इस सरकार ने। प्रधानमंत्री ने कहा ई मार्केटिंग, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इसको ई नाम के नाम से जाना गया, और इससे हर किसान अब जुड़ देता है अपने टेलीफोन से, अपने मोबाइल से, वो चाहे तो देश की हर मंडी से वो कनेक्ट होता है, उसे हमेशा पता चल सकता है कि किस मंडी में किस कमोडिटी का या किस उपज का क्या भाव चल रहा है, और अपनी मंडी के अपने व्यापारी से मोल भाव करने का उसे मौका मिल,
0: तो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाए,
1: रियल टाइम इन्फॉर्मेशन में। तीसरा सबसे बड़ी बात थी कि जोखिम, किसान कहा जाता था कि ऊपर वाले पर भगवान बरसेंगे तो बारिश होगी, खेती होगी, मतलब सब कुछ ऊपर वाले पर निर्भर था। नहीं, इस सरकार ने इसको तय किया कि नहीं, किसानों को किसी के भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता। किसान को जोखिम फ्री किया गया, उसको एक ऐसा कवच दिया गया कि उसकी खेती अगर नुकसान हो जाती है तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। बीमा योजना लाई गई, प्रधानमंत्री बीमा योजना इतना बढ़िया योजना है कि बहुत नॉमिनल और जो प्रीमियम जमा होता है वो पैसा

0: किसान नहीं देता, उसका बहुत छोटा सा 5% किसान देता है, बाकी और 2.5% से 5% बाकी सब सरकार के खाते से जाता है किसी भी कंपनी को। उसका फायदा मिला तो जोखिम बच गया है, अच्छे सीड मिल गए, अच्छे इनपुट मिल गए और अच्छा बाजार मिल गया। और सरकार ने इसके अलावा सरकार ने अपनी ओर से एक कवच दिया कि आपका जो भी बाजार के मुकाबले बाजार में मूल्य आपकी उपज का कम मिलता है तो वो सरकार खरीदेगी। सरकार ने इस बात की एक तरह से आज से नहीं बहुत लंबे समय से यह परंपरा चली आ रही है कि सरकार खरीदती है, लेकिन
1: तब से हम न्यूनतम समर्थन मूल्य
0: कहते हैं। किसान इसको बहुत लाइक करता है, बहुत पसंद करता है कि गाढ़े दिनों में सरकार हमारे साथ खड़ी रहती है। सरकार की पूरी कोशिश है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करेंगे, लेकिन कोशिश ये होती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद न करनी पड़े, उसकी उपज का मूल्य बाजार में बेहतर मिले। यानी एमएसपी का जो घोषित मूल्य है, अगर कोई किसी चीज का 2500 रुपए क्विंटल मूल्य है, अगर बाजार में 2700 या 3000 रुपया मिलता है तो किसान 2700 या 3000 पर बेचेगा, 2500 पर सरकार को नहीं देगा। यही सरकार की पूरी कोशिश है कि बाजार में उसकी उपज उसके कहे दाम पर मोल तोल के आधार पर बेहतर मूल्य उसको मिले। तो सरकार ने बहुत बेहतर
1: बिल्कुल सो जैसा आप कह रहे हैं कि इनपुट कॉस्ट और रिम्यूनरेटिव प्राइस दोनों पर ध्यान दिया गया है। मिस्टर अय्यर, व्हाट वुड यू से, यू नो द आइडिया इज टू इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स एंड एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी फॉर द कंज्यूमर्स ऑल्सो, सो हाउ फार यू फील द फूड मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द वैल्यू एडिशन मैकेनिज्म्स, दे हैव इमर्ज्ड एज द सेंट्रल पिलर ऑफ योर इंडियाज फार्म टू मार्केट स्ट्रैटेजी and have been successful?
2: See, the farmer needs correct inputs at the right time, at a right price. Right. And after that, at the time of harvest, he needs a financial help to take care of the expenditures. Then after the produce is harvested, he needs a market and a good price that will that will take care of his cost as well as give him some reasonable profit to sustain his livelihood. So towards this end, what have they revised? Keep into account the rise in the input cost. And as per the Swaminathan Committee report, the effort has been to see that at least the cost is covered as per the recommendation to the great extent possible. At the same time, as Sinsap was saying, if the market offers a better price, the farmers have a choice to move on. And with this e-market, with the e-NAM, and along with that, now the lot of attention is being given for storage facilities. Okay. See, the biggest problem is when the prices, have not reached their optimum level, the farmer has a problem in disposing his produce. Yes. So therefore, he requires good storage facilities. And we have seen in the last two budgets, and in fact, the last budget has set aside at least 1 lakh crore, particularly to take into account this particular problem. Yes. Because you need to see financial risk management, and what is needed today is a large-scale infrastructure investment to increase farm incomes and build these kind of facilities and connectivity.
1: Yes.
2: So this is very important. This is the thrust area. So the government has been encouraging also private-public partnership also in this region for having a chain of cold storage chains in everywhere.
1: Yes.
2: Because invariably when you hear stories of farmer in distress because the production there is, like for instance a crop like onion or a crop like cotton or even a crop like even tomatoes. See, what happens is suddenly there is a glut in the market and the prices fall. And there is no food processing industry which is developed to the full extent to take care of this. So the government thrust area is food production as well as necessary food processing industry that can take care of these vagaries, caused by nature or by otherwise, to see that the farmer doesn't lose out on getting the best price.
1: Yes. Coming to you, Mr. Singh, अभी आपने थोड़ी देर पहले cooperative model की बात करी थी कि Ministry of Cooperation बनी इन 12 वर्षों में, इसका कृषि क्षेत्र को किस तरह फायदा हुआ है और जिस तरह का हम cooperation models कृषि क्षेत्र में देख रहे हैं डेयरी सेक्टर में या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनका क्या फायदा हो रहा है उसके बारे में आप हमें थोड़ा बता सकते हैं? प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज जो है या मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ये किस तरह का भूमिका प्ले कर रही है?
0: देखिए, कोऑपरेटिव को लाने से पहले कोऑपरेटिव का एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, ये सरकार के आने के साथ ही एक नया मंत्रालय बना, सहकारिता मंत्रालय। जिस तरह से उसका विस्तार हो रहा है, गांव शायद ही देश का कोई ऐसा गांव बचा हो जहां पर कोऑपरेटिव आंदोलन न पहुंचा हो। और किसान तो हमें लगता है किसान ऐसा होगा जो किसी न किसी तरह से कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा, चाहे उसे लोन लेना हो, क्रेडिट चाहिए होगा, दूसरा उसे सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, या शुगर का प्रोडक्शन हो, यानी किसी भी चीज से अगर जुड़ा किसान है तो वह कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा। सरकार ने इसको कैसे जोर से दिया, आप समझिए कि डेयरी डिपार्टमेंट को, डेयरी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें भूमिहीन किसानों की एक बड़ी संख्या है। दुनिया का आज की तारीख में हम 25% केले हमारा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया डेयरी में, और प्रोडक्शन वाइज हम दुनिया के नंबर एक प्रोडक्शन करने वाले देश बन चुके हैं। जरा सोचिए कि इतना बड़ा डेयरी सेक्टर में काम करने वाला भारत आखिर कैसे यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया। तो यह आंदोलन सिर्फ सहकारिता के बूते हुआ, सहकारिता के नाते हुआ, और ये पिछले 10-12 सालों में तो कई फोल्ड के, कई गुना के वृद्धि दर्ज कर रहा है। इसकी ग्रोथ बहुत तेज है। डेयरी सेक्टर में सबसे ज्यादा भूमिहीन किसान इसमें काम करते हैं। 2-4-5 पशु रख करके, दुधारू पशु रख लिया और दूध सवेरे उनका कलेक्शन सेंटर पे पहुंचा देते हैं और उनको पैसा मिल जाता है, हाथ के हाथ पैसा मिलता है। कोऑपरेटिव सेक्टर से खाद मिलती है, सारा इनपुट। आप समझिए कि हमें लगता है कि 60-70% किसान फर्टिलाइजर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू कोऑपरेटिव ही जाता है, उनके पास पहुंचता है, और सब उधारी पर मिलता है, सब क्रेडिट पे मिलता है। किसान को जब सख्त जरूरत होती है फर्टिलाइजर की, सीड की, किसी भी इनपुट की, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू ही जाता है, और जब उसकी खेती हो जाती है, जब उसकी उपज तैयार होती है, जब वो मार्केट में बेच लेता है, यानी उपज को खरीदने का भी काम कोऑपरेटिव सेक्टर की एजेंसीज ही करती हैं। हर स्टेट की अपनी नोडल एजेंसीज हैं जो कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, जो उनके लिए काम करती हैं। अब इसके बाद फिर वो पैसा जमा करते हैं। एक छोटा सा डेटा दूंगा आपको कि पिछले 14 के पहले हमें लगता है कि मुश्किलन 25-28 हजार रुपया या मैक्सिमम मान लीजिए 30 हजार करोड़ कुल टोटल क्रेडिट रही होगी कोऑपरेटिव की ग्रामीण क्षेत्रों में। कोऑपरेटिव सेक्टर का एक कॉर्पोरेशन है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NCDC बोलते हैं, उसका आज की तारीख में जो डिसबर्समेंट है, इस साल का जो बजट है, जो उसका टारगेट है, वह 1.5 लाख करोड़ का है। जरा सोचिए, एक साल में, सिर्फ एक वर्ष का 1.5 लाख करोड़। और पिछली सरकारों का, पिछली कितनी सरकारें नहीं, वो सिर्फ 25-30 हजार करोड़ पर टिकी रही।
1: तो ये एक आजादी भी मिल रही है छोटे और सीमांत किसानों को जो प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं उनसे।
0: सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट लेंडर से उनका बचाव हो गया, सूदखोरों से उनको पैसा नहीं लेना पड़ता, अपनी पैक से ले सकते हैं या कोऑपरेटिव बैंक से ले सकते हैं। दूसरी बात कि सरकार ने सबको KCC दे रखा है। आपने जो कहा ना कि इस सूदखोरों से तो इनका छुटकारा ही हो गया, क्योंकि KCC आपके हर एक के हाथ में आ गया। हाँ, एक बात और, जितने भी दूसरे एलाइट सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए संबद्ध जो क्षेत्र हैं, उन्हें किसान सरकार मानती ही नहीं थी, उनके उनके किसी परिभाषा में आते नहीं थे। आज जो पशुपालक हैं, डेयरी वाले हैं, जो दूध वाले हैं, या मछुआरे हैं, बी कीपिंग वाले हैं, बागवानी करने वाले हैं, इन सबको किसान मान लिया गया है। और किसान क्रेडिट कार्ड अब सिर्फ किसान को नहीं, खेती करने वाले को नहीं, ये सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी KCC का लाभ मिलता है। यानी बहुत नॉमिनल ब्याज दर पर उनको जितना उनकी डिमांड होती है उसको पैसा मिल जाता है। इसलिए उनकी स्थिति में बहुत भारी सुधार हुआ है।
1: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, कैन यू टेल अस दैट दिस गवर्नमेंट हैज ऑलवेज हैड एन इंक्लूसिव अप्रोच टुवर्ड्स डेवलपमेंट इन एनी एंड एवरी सेक्टर। सो इफ यू टॉक अबाउट द वल्नरेबल सेक्शन, द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ऑफकोर्स यू मेंशन द PM किसान सम्मान निधि योजना, द वेरी वर्ड सम्मान इज गिविंग रिस्पेक्ट टू द फार्मर्स। देन द फसल बीमा योजना यू टॉक्ड अबाउट, किसान मानधन योजना इज गिविंग पेंशन फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एंड नियरली अबाउट 25 लाख फार्मर्स हैव एनरोल्ड। एंड ऑल्सो अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एंड एनलाइटनिंग स्टेटिस्टिक इज दैट 51% beneficiaries of PM Fasal Bima Yojana belong to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe, OBC categories. And of course, you mentioned PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, which is going to benefit 1.7 crore farmers in most low productivity areas, the aspirational districts. So you feel that it is one of the intentions of the government is to take this prosperity to every farmer, be it in a remote area or be it from a backward area?
2: Absolutely, absolutely. You see, the overall philosophy of Prime Minister Modi has been that beech se lekar bazaar tak, and this is a broad concept, you know, from the seed to the market, the final produce. In that, whatever process is involved, including the economic condition of the farmer, the health of the farmer, and also use of modern technology. And do not forget particularly irrigation. Now, in the last budget, they have got it for micro irrigation, where 5,000 crore has been set apart. Yes. See, apart from major irrigation projects, because the underlying philosophy is per drop more crop. That is, for every drop that is being, you know, water that is, that the product

0: activity must go up, which will require, you know, streamlining your canals, repair and maintenance of your canals, sub canals, and all these requires, you know, all the ministries of the government along with the state governments. They have to work hand in hand to ensure the benefit reaches everybody. You mentioned about the Dalit farmers, you mentioned about tribal farmers. They have a problem of their own, a very unique problem that is also being tackled in a different way, particularly, you know, the climatic conditions as well as the land condition. You know, there are places which are receiving rainfall throughout the year. There are places that do not receive rainfall at all. So you have already schemes to tackle that also. This particular approach we have seen is there is not one single aspect that is neglected. And our farmer knows that he has a confidence that this government, whatever problem comes, they will take care of it. And take, for instance, the role of technology. I want to make a special mention. Now, Drone Didi Yojana. Now, look at Drone Didi Yojana. This is to empower the women self-help groups in our villages. But that is also connected with agriculture productivity. Now, these Didi, Drone Didis are being trained to use the technology for, you know, pesticides, spreading the pesticide, spraying of pesticide, as well as finding out the condition of the crops. You know, we had the vast acreage under crop. What is the condition of the crop? So this kind of technology availability is also giving boost to the farmer, like the soil health card and other things. So the overall idea is, you know, there should be an integrated development.
1: Absolutely. So Mr. Singh, jaisa inhone kaha, Mr. Iyer ne, ki ek parikalpana hai ki hum jo vishv hai usko bhi export kare. Hum already exporter, major agriculture exporter ban gaye hain. 2014 se dekhe to 37% bade hain hamare agriculture exports, $51 billion ho gaye hain. Aur isme jo processed food exports hai unka share bhi badhkar 20% ko paar kar gaya hai. So ek shift hai towards higher value added. So ek progressive shift dikhai de raha hai food processing ki taraf. Food processing par bahut sarkar ne jo bal diya hai, PLI bhi aaya hai food processing industry ke liye. Iske bare mein aap hama thodi bata sakte hain jo value added aur food processing hai, is par bal diya jana kyun itna important hai?
2: फूड प्रोसेसिंग क्या है कि रा फूड आइटम्स यानी जो कृषि उपज है, अगर उसको हम प्रोसेस्ड करके बेचते हैं, वैल्यू एडिशन कर देते हैं, तो उसका मूल्य बेहतर मिलेगा, किसान को फायदा होगा. हो क्या रहा है कि जैसे हमारे यहाँ जितना दूध पैदा होता है पूरे देश में, दुनिया का सबसे ज्यादा दूध पैदा करने वाला देश, जिसका मोर देन 60% कच्चा यूज होता है, जिसकी प्रोसेसिंग नहीं होती है, 30-40% ही दूध का अभी तक प्रोसेसिंग हो पाती है. अगर इस दूध की प्रोसेसिंग होने लगे तो बेहतर मूल्य किसानों को और बेहतर मूल्य मिल सकता है और कंज्यूमर्स को भी राहत मिलेगी. इसी तरह से अगर हम देखें हमारे यहाँ जो फिशरी है, फिशरी एक बड़ा सेक्टर है. अगर हम इसकी प्रोसेसिंग सेंटर खोल दें, प्रोसेसिंग में प्रोसेसिंग बेहतर होने लगे, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और डोमेस्टिक डिमांड जो पूरी होगी होगी, और फिशरमैन को बेहतर मूल्य मिलेगा, अच्छा मूल्य मिलेगा, लाभकारी मूल्य मिलेगा. तो हमारे देश में जितने भी अब तक फूड प्रोसेसिंग के वो बने सेंटर बनाए गए, मेगा फूड पार्क बनाए जाते हैं, कितने साल से हमें लगता है 201 साल से हम सुनते आ रहे हैं जब से ये मिनिस्ट्री बनी है, इस सेक्टर में बहुत अच्छा काम नहीं हुआ जितनी संभावना है. यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, काम उस गति से नहीं हुआ है. इस सरकार का फोकस पूरा रहा है, खासतौर से प्रधानमंत्री का, कि किसानों की उपज का बेहतर मूल्य तब मिलेगा जब उसके उपज का प्रोसेसिंग होगी, प्रसंस्कृत के तौर पर जाएगा. कोई भी चीज टमाटर के, तो जैसे टमाटर है, आलू है, एक सिंपल वे में अगर टमाटर जाता है तो किस साल के कुछ महीनों तक ही वो सप्लाई की जा सकती है. लीन पीरियड में उसके मूल्य बढ़ जाते हैं, जिसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे कंज्यूमर्स पर. तो कंज्यूमर्स को भी प्रभावित ना होना पड़े, किसान को अच्छा मूल्य मिले साल भर, इसके लिए प्रोसेसिंग का होना बहुत जरूरी है. और जितने भी प्रोड्यूसर्स, जितने भी प्रोड्यूस हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उनके सारा प्रोसेसिंग सेंटर उसी जगह पे होना चाहिए जहां से वो पैदा होते हैं.
1: तो इस संदर्भ में मिस्टर सिंह, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत 1185 प्रोजेक्ट्स मॉडर्न प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एस्टैब्लिश किए गए हैं नवंबर 2025 तक. और जो PLI जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए लाई गई है, जिसके अंतर्गत 169 एप्लीकेशंस को मंजूरी मिली है. और PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम भी है, जिसमें 4 लाख से अधिक एप्लीकेशंस के माध्यम से 1,70,000 से अधिक लोन्स को मंजूरी मिली है. सो आपको लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है, और आपको लगता है कि इसमें, जैसा आप कह रहे हैं, कि स्कोप और भी ज्यादा है?
2: कोरोना के पीरियड में प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, और कही ही नहीं थी बल्कि उन्होंने घोषणा भी की थी, कि 1,00,000 करोड़ का एग्री इंफ्रा फंड का अनाउंसमेंट किया था, और उस फंड का पिछले अगले 5 सालों तक उसका उपयोग किया जाएगा. और अब समझिए कि 1,00,000 करोड़ का एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, तो ये

0: जितना आपने बताया मत्स्य संपदा हो चाहे फूड संपदा हो, जितनी भी योजनाएं भाई परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, सब उसका पार्ट हैं। और इसका मतलब है कि प्रोसेसिंग के सेक्टर पर पूरा फोकस रहेगा। जब प्रोडक्शन बेहतर होगा, अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो हो सकता है उसके खराब होने के चांस हो जाएंगे, तो उसको अगर प्रसंस्करण कर देते हैं तो वो हमारी चीज बच जाती है। और कम उत्पादन में बेहतर उपयोग करने का तरीका है प्रसंस्करण। प्रसंस्करण से कई फायदे होते हैं, जो किसान को फायदा, कंज्यूमर को फायदा, और उससे जो उस पूरी चेन बनती है उसमें लोगों को रोजी रोजगार मिलते हैं, इम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है।
1: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, एज वी मेंशन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम दैट वी हैव रीच्ड अ रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड आवर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन हैज ऑल्सो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज्ड इन द लेटेस्ट बजट प्रमोशन ऑफ high value crops like coconut, cocoa, cashew, sandalwood in coastal regions and agar trees in northeast and almonds, walnuts and pine nuts in hilly areas. These have been defined as the focus areas. So you think, you know, this kind of very focused approach that the government is taking, looking at the very vast and varied geography of India, that is the way to go forward using the strengths of the opportunity?
2: No, you have raised a very, very important dimension to the government's priority. Particularly, yes, you talked of the need for to going for high-value crops. You know, in fact, the Prime Minister, soon after the last budget, you know, he specifically addressed a webinar where he spoke about this and he appealed to the farmers to take care of this diverse climatic condition and focus on scaling up the harvest of these high-value crops. Yes. And some of the crops you mentioned. Mm. Because today, as the Prime Minister looks at the possibility of Indian farmers getting great access to world market, it is important for to take care of quality, to take care of branding and standards of our produce. This is very, very important. And for that, you know, agriculture experts, industry and farmers will have to jointly work towards this goal, which is actually the thrust area. Because as the markets of world are opening, as the Prime Minister himself put it, and global demand is changing, so we need to see that how we are more export oriented in our production. That is very, very important, because we have a rich agroclimatic zones. That is why, you know, Prime Ministers particularly mentioned, you know, you mentioned cashew, cocoa, sandalwood, and this national mission on edible oil and pulses, and the national mission for natural farming are particularly to meet this objective.
1: Thank you so much, Mr. Iyer. We are running out of time. Thank you so much, Mr. Singh, for this in-depth discussion on the various aspects of the progress in agriculture and farmers' welfare that has taken place in the last 12 years of the NDA government and the way forward. Thank you
2: very much.
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल किसान कल्याण और किसान केंद्रित नीतियों के माध्यम से किसानों का सशक्तिकरण। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: इन द स्पेशल सीरीज यू वर लिसनिंग टू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट Empowering farmers through welfare and farmer-centric policies. The participants were Shekhar Iyer, political analyst, and S.P. Singh, senior journalist. The moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
5: আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ যুৱবাণীৰ অনুষ্ঠানসূচীলৈ উভতি আহিছো। আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰা হৈছে মিডিয়াম ৱেভৰ 299.9 মিটাৰত 1035 কিলোহাৰ্টজ আৰু ডি আৰ এম ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ 1026 কিলোহাৰ্টজত। প্ৰিয় শ্ৰোতা, এতিয়া আগবঢ়াইছো বৰ্ষাসিক্ত বসুন্ধৰা শীৰ্ষক এখনি আলেখ্য। আলেখ্যখনে ৰচনা আৰু প্ৰযোজনা মৃদুলা দাস আৰু সুদৰ্শন বৰকটকীৰ।
6: বর্ষাসিক্ত বসুন্ধৰা।

0: ইমানপুৰে শ্ৰোতাসকলে ভজনৰ অনুষ্ঠানটি শুনিলে। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 8:45 সমাচাৰ সন্ধ্যা, 9:00 News@9 আৰু 9:15 স্পটলাইট দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সে সমাচাৰ সন্ধ্যা কে সাথ মই লভলী নিগম। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए 1 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां

0: प्राप्त कर ली है।
1: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
3: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
2: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
4: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
2: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाली सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। NTA ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स OTT की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
3: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
4: 2-3 ब्रांचेस आल्सो।
2: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
5: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
2: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है।

0: पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमेरिका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।